उसका इलाज कोशिश कर रहे हैं, दीन ने क्या बताया। और मजालिस से बेहतर ऐसे मौजूआत नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है किताबें पढ़ें, और हम लोग अपनी ज़िंदगी में मुलव्विस हैं। बेहतर है कि कोई ना कोई ऐसा हो जो हमें इन इन बातों की तरफ रहनुमाई करे। अगला का लाख लाख शुक्र है कि ये तौफीक हमें मिली है। उम्मीद है कि किसी तरह से चंद कदम हम आगे बढ़ सकेंगे। पहली मजलिस में हमने इब्तदाई मुकदमाती गुफ्तगू की थी, इंट्रोड्यूस किया था ये मौजू क्या है, और ये मुलव्विस है, हर घर का मौजू है। एंग्जाइटी, इंसान बहुत ज़्यादा हौल और धड़का, परेशानियाँ और झगड़े, गुस्सा, और आखिर में खुदा ना खास्ता इंसान उस नतीजे तक पहुँच जाए कि खुदकुशी कर ले। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि इंसान अपनी हकीकत से ना आगाह है। अगर वो आगाह हो जाए तो कभी ऐसे काम नहीं करेगा जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, और ज़िंदगी भी बर्बाद हो, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाए। मोमिन वह है जो एक बैलेंस ज़िंदगी बसर करता है। कल हमने बताया था कि तमाम अदियान इस बात के कायल हैं, तमाम रिलीजन्स, और ये भी साबित है कि मेजॉरिटी दुनिया में किसी न किसी तरह का रिलीजन रखती है, मज़हब रखती है। वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, इस्लाम हो, अतः हिंदुज़म में भी आत्मा की बहस है, जिस्म की बहस है। तो ये पार्ट ऑफ बिलीव्स है। इंसान कंपाउंड रियलिटी है, दो चीज़ों से बना हुआ है, एक जिस्म है और एक रूह है। इस्लाम ने रूह की तख्लीक और रूह से मुतालक जितना बताया, जितनी रहनुमाई की है, किसी दीन ने नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम मानता है रूह असल है, जिस्म फरा है। फाउंडेशन ए सोल और उसके बाद ये जिस्म है। इंशाल्लाह आप आइंदा सुनेंगे इसके इससे मुतालिक। आज हमारी गुफ्तगु इस जहन को कंट्रोल करने के लिए दीन इस्लाम ने सबसे पहला जो काम किया है वो है तहारत नफ्स। आप अगर यहाँ उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, खुदा इंशाल्लाह तौफीकात में इजाफा करें। हमारी फ़िक़्ही किताबें जितनी भी हैं, जैसे लुमतायन जो हैं, हमारे यहाँ दो शहीदों की किताबें, एक ने लिखा है, दूसरी उसकी शरह लिखी है, 46 उसमें किताबें हैं, दो जिल्दें हैं, बड़ी जिल्दें उस ज़माने में, शायद आजकल नई जिल्दें ज़्यादा बन गई, 6-7 जिल्दें हैं, 46 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है किताबुत तहारा, और अगर किसी भी मर्जा की किताब तौज़ील मसाइल उठाइए, इब्तदाई तकलीद के मसाइल के बाद जो बहस है वो तहारत की बहस है। तहारत की बहस यानी क्लीनलीनेस की बहस है, बहुत लंबी बहस है। इसमें फ़िक़्ह जाफरी में 1000 से ज़ायद मसाइल हैं तहारत से मुताल्लिक़। कितने? 1000 से ज़ायद मसाइल, मोर देन 1000। इससे पता चलता है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है तहारत की। ह्यूमन ब्रेन, इंसान का की जो जहन, इसका जहन है अंडर कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ आउटर रियलिटी को देखना नहीं है, बाहर के हकायक को देखना नहीं है, बल्कि अंदरूनी हकायक से भी वाकिफ होना है। अंदरूनी हकायक हैं यहाँ तक कि उसकी ग़िज़ा का असर उसके बदन पर, उसकी ग़िज़ा का असर उसके नुतफ़े पर, उसकी ग़िज़ा का असर उसकी नस्लों पर। अगर हलाल ग़िज़ा से हट जाए तो फिर असरात भी ख़तरनाक होते चले जाते हैं। इसीलिए रिवायत में कि सबसे बेहतरीन रिस्क जो है रिस्क़ हलाल है। रिस्क हलाल आसान काम नहीं है। अब ये लोग जो आज बिलियनर्स बन गए हैं, आज इंडिया में 45 फैमिलीज हैं जो सबसे ज़्यादा जिनके पास दौलत है, और वेस्टर्न कंट्री में चंद फैमिलीज हैं जिनके पास दौलत है। किस तरह से ये सिमट कर उनके पास दौलत आई है? अगर इस्लामी कानून को देखें, इम्पॉसिबल है इंसान के पास एक तरह से सब दौलत एक जगह

जमा हो जाए। इस्लाम खींचता नहीं है कम्युनिज्म की तरह, इस्लाम अखलाक को इतना बुलंद कर देता है वो लूटने के बजाय लुटा देता है। ये दीन इस्लाम की खसूसियत है, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी रूहानियत, उसकी मानवियत इतनी बुलंद हो जाती है, उसको मजबूर नहीं किया जाता, सिर्फ वो 20% फुमसी नहीं देता, बल्कि यूफून बिन नदर व यखाफून यौमन काना शर्रह मुस्ततीरा व युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये जो देने के बाद भी कोई नाम नमूद के लिए नहीं, नाम आ जाए नहीं, इन्नमा नुतअमुकुम लिवजहिल्लाह, ये खिलाते भी हैं तो किसी शोहरत के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। इंसानी मेयार को इतना बुलंद कर देता है इस्लाम कि इंसान फिर नाम की चक्कर में नहीं रहता, नाम को दफन कर देता है ताकि आखिरत उसके बहुत रोशनास हो जाए। सलावात पढ़िए मोहम्मद। तहारत बहुत अहम है, तहारत में बदन की तहारत से मुतालिक गुफ्तगू है और जिस्म की तहारत के साथ साथ हर रोज़ नमाज 5 बार नमाज है और नमाज से पहले जिस्म भी पाक होना ज़रूरी है, पाक होने के बाद फिर वज़ू करना भी ज़रूरी है। अरे भाई पाक हैं, साफ हैं, अब फिर वज़ू क्यों हैं? ये खुद एक तो अम्र परवरदिगार है, हुक्म परवरदिगार है कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो पहले वुज़ू करो। तो पहले इम्तिसाल अम्र परवरदिगार यानी कमांड ऑफ अल्लाह को ओबे करना है, नंबर वन। नंबर टू क्लीनलीनेस है, नाक का साफ करना, मुंह का साफ करना, हाथों का साफ करना, सफाई है। तीसरे फरहत जिस्म और रूह है। मौला छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला फरमाते हैं कि इंसान की फरहत, इंसान की बालिदगी, इंसान की खुशी, रूहानी खुशी किस में है? उदू में है। और ज़रा सा मामूली तौर पर एक गलतियाँ उमूमन जो करते हैं हम लोग, उदू को पोछ लेते हैं। पोछना नहीं है, कोशिश ये करनी है कि ठंडे पानी से वज़ू करें। खैर यहाँ तो आप बॉम्बे में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाज़ मकामात हैं जैसे नॉर्थ में चले जाइए, कश्मीर और दिल्ली वगैरह, सर्दी में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि ठंडे पानी से वज़ू करो और पोछो नहीं जब तक तुम्हारे चेहरे और हाथों पर वज़ू का पानी रहेगा। हर लम्हा फरिश्ते तुम पर इस्तग़फ़ार करें। यानी क्या माने हैं ये, इस तरह से आसानी से हम लोग ग्रास्प नहीं कर सकते, इसके पीछे राज हैं, रमूज हैं, उसका तलाश करना बहुत ज़रूरी है, इन डेप्थ उसकी हकीकत है। इसके माना यह है कि इंसान वुदू क्या कर रहा है बल्कि परवरदिगार की बारगाह में जा रहा है। मैंने पहले से कहा था 19 शर्तें हैं वुदू के लिए, वज़ू करने के लिए 13 शर्तें हैं, 13 कंडीशंस। उनमें से पहला कंडीशन ये है कि स्टिल वाटर हो, पानी खालिस हो। दूसरा ये कि पानी मुजाफ ना हो और खालिस होने के साथ साथ पानी मुबाह हो। मुबाह के माने क्या है? पानी आपका हो। अरे भाई सब पानी अल्लाह का है, लेकिन मैं दूसरे के घर में कर रहा हूँ, अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही, उससे पहले इजाज़त लेना है। कितना पानी खर्च करना है? का क्वार्टर लीटर, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे पास यहाँ पे खुला हुआ है मस्जिद में कि बिल देना थोड़ी है, नल बह रहा है, वज़ू कर रहे हैं, ना इजाज़त नहीं है। हाथ एक नल पे रखिए, थोड़ा डालिए और हाथ धोइए, उसी तरह से कोशिश कीजिए क्वार्टर लीटर में वज़ू। मौलाना मज़ा नहीं आता, तुम्हारे मज़े के लिए इबादत नहीं है, हुक्म परवरदिगार पे झुक जाने का नाम इबादत है। तो मुझे मज़ा नहीं आता, ये तुम्हारी तबीयत है। शरीयत ने जो उसूल मुकर्रर किए हैं उन उसूलों पर तुम बाकी रहो तो तुम्हें फ़ायदा होगा, कोशिश ये करो। तो ये मुबाह में पानी तुम्हारा हो, माने ये है कि क्यों भाई इतना थोड़ा पानी, उसमें शर्त भी तुम्हारा हो,

तो इस्लाम ये कह रहा है अगर ये पानी का ख्याल करेगा तो दूसरे की बड़ी प्रॉपर्टी हड़प नहीं करेगा जी। पानी को अगर गौर करेगा तो फिदक कैसे खाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले तो ये पहले ही शहीद मुतहरी ने इस पे बहस करते हुए बहुत खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि इसका इस शर्त का स्पिरिचुअलिटी से रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी पानी मुबाहों का ताल्लुक इसलिए कि पानी अल्लाह का है, अल्लाह का दिया हुआ है, इसका ताल्लुक रूहानियत से नहीं है। कहाँ से ताल्लुक है? रेस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह सिखा रहा है कि दूसरे की प्रॉपर्टी का एहतराम करो, खा वो एक गिलास पानी ही क्यों ना हो। अगर वहाँ से कॉन्शियस हो गया तो फिर वो गॉड कॉन्शियसनेस। हमारे पास हमारी जिंदगियाँ जो है अमूमन जो गुजर रही हैं, सॉरी टू से तो ज़रा सा मैं बाज़ वक्त ब्लंट होता हूँ, क्लियर होता हूँ, खुल के बोल देता हूँ, मैं मुँह फट हूँ, मैंने देहाती हूँ, मुझे वो आता नहीं है, ज़रा सा वो शाल में लपट के बात करना आता नहीं है, सीधा सीधा बोलने का। हम लोग शिर्क करते हैं, जिंदगी हमारी शिर्क में गुजर रही। कैसे? मेरे बेटे की शादी यूँ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी को यूँ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये शिर्क है। अल्लाह का हुक्म क्या है? ये तौहीद। लोगों की बातों में जाने वाले का नाम मोमिन नहीं है, अल्लाह के हुक्म को मानने वाले का नाम है मोमिन। इसमें ब्रेवनेस होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, डट के करना चाहिए। अभी मुहर्रम सफ़र ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह शादियां इस बारगाह में हों, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में हों, जहां पर दुरूद व सलावात की आवाज़ें आती हैं, वहां से दूल्हा दुल्हन जाएंगे तो आबाद रहेंगे जी, बजाय इसके कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां जाए। तो इंसान इन रूहानियत को हासिल करे। और ऐसे अंधाधुंध खर्च किए जाते हैं जो हमारी शान के पर, कहते हैं मौलाना मेरी इज्जत। अरे भाई इज्जत, तुम्हारी इज्जत कौम जानती है, तुम कौम में रहते हो, पीपल अवेयर ऑफ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी हैसियत से बढ़कर तुम खिलाते हो तो लोग बाहर जाके कहते हैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, इसके पास कुछ हो है वह नहीं है ये बता रहा है, खा पी के भी वो आपको कोई अच्छा कह रहे हैं नहीं है। तो जो है सो बताइए, जो नहीं है बताने की जरूरत नहीं है। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले हिस्सा, ये बहुत ही अहम है। जुए बार नामी एक नौजवान है, एक नौजवान बच्चों के लिए बेहतरीन किस्सा है, सबके लिए अच्छा है। जुए बार अफ्रीकन लड़का है जो सरकार के साथ असाब सुफा में है, जो मैं उनका नाम रखा हूँ उसका बैचलर क्वार्टर। सरकार ने मस्जिद के पहलू में एक छप्पर डाल दिया था, जो नए नए मुसलमान होते थे लोग उनको रख, इसलिए मस्जिद में मुसलमान सो नहीं सकते, खुदा रखा नजीस वगैरह वगैरह हुक्म शरा है कि मस्जिद के बाहर छप्पर था, उसका नाम है असाफ सुफा, चबूतरे के असाब, ठीक। वहाँ पर रहता था एक नौजवान जुआबर। जुआए पर से एक दिन सरकार ने कहा शादी किया तुमने, तजव्वुज था। नौजवान बच्चे को साहब अगर पूछे, किसी बच्चे को अगर नहीं शादी शुदा, वो सर खुज जाएगा, शर्म आ जाएगा, पसीना आ जाएगा उसके चेहरे पर जी, वो परेशान हो गया। सरकार मैं और मेरी शादी रहने वाला अफ्रीका का पता है कि रंग ढंग तो पता है, उसके बाद अरबों में रहता हूँ, इसमें जो है मेरी शादी यहाँ कहाँ से हो सकेगी। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। सरकार ने कहा कि इस्लाम आया है, हमने नस्ल की फर्क को मिटा दिया है। तवज्जो, इस्लाम आया है, हमने इम्तियाज नस्ल को हमने ख़त्म कर दिया, ये सैयद, ये पठान, ये गोरा, ये काला इस्लाम में नहीं है। तजव्वुज, तजव्वुज, तजव्वुज, तीन मतलब सरकार ने कहा शादी कर, शादी कर, सरकार में तैयार हूँ। तारीख कहती है अफ्रीका के अफ्रीकन जवान के लिए मदीने की खूबसूरत लड़की जुल्फा नाम है उसका, चुना सरकार ने। अब यहाँ पर अमर मौलवी एक बहस है हमारे

रहे थे। हम लोग सब कहते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल फराजा, मौला तशरीफ लाए। हम लोग खुदा के वास्ते हम तैयार नहीं हैं, इस्लामी हुकूमत के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस्लामी हुकूमत नस्लों रंग से इम्तियाज से कहीं बुलंद हुकूमत है, जहां पर सब इक्वल हैं, किसी का कोई इजारादारी नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, अगर कोई मुकर्रम है वो मुत्तकी है। सलावात पढ़े मोहम्मद पर। मौलाना ये टॉपिक से इस वाक़े का क्या राबेता? राबेता बहुत ज्यादा है। हमारी बहुत सी परेशानियां अंधाधुंध झूठे शानों की वजह से हैं। बहुत से लड़के जो हैं शादी के दूसरे दिन ही उनका मुंह लटका हुआ है, क्यों? इतना कर्ज कर लिया है, अब उसको शायद एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल कर्ज अदा करने में गुजर जाए। किसने कहा भाई? किसने कहा आपको ये झूठी शान बताने के लिए? ये दीन ने नहीं कहा है, तुम्हारी सोसाइटी ने कहा। तुम सोसाइटी के बंदे हो या अल्लाह के बंदे हो? एक तहव्वुल, एक इनकलाब की जरूरत। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो प्रेशर बढ़ेगा। कर्जा है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, अब क्या करना है? उसके पास इधर दीन भी नहीं है तो सिवाय दूसरे चॉइस के कोई और चॉइस नहीं है। इसीलिए दीन इस्लाम पहले ही से तहारत नफ्स, तहारत जिस्म की तरफ दावत दिया है। पहले जिस्म भी पाक हो, तुम्हारी फिक्र भी पाक हो। जब फिक्र पाक हो जाएगी तुम सही सोचोगे, कभी जिंदगी में इस तरह का काम ही नहीं करोगे जो तुम्हारे नफ्स के खिलाफ। समझने की कोई? सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। मेंटल हेल्थ में सबसे अहम चीज जो बताई गई, इंशाल्लाह आइंदा बहस करूंगा मैं कनाअत की, मगर ये जो बहस आज की है तहारत के माना ये है। अभी एक रिवायत पढ़ता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, सरकार की रिवायत हदीस है। सरकार फरमाते हैं 5 वक्त की नमाज क्या, 5 बार नमाज पढ़ना क्या है? ऐसे हैं जैसे तुम्हारे घर के सामने दरिया गुजर रही है। जी, आपके घर के सामने, मैं कश्मीर गया था, बहुत से मोमिनीन हैं मौलाना, ये बिल्कुल फाउंटेन हेड है, मैंने देखा पानी भी बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल ताज़ा पानी, और सवाल ही नहीं किसी तरह का पोल्यूशन का। वैसे मकाना पहलू में शियों के अपने मोमिनीन की और आबादी है। जी, तुम्हारे घर के सामने एक फाउंटेन चल रहा है और तुम 5 बार उसके अंदर डूब रहे हो, अब कहाँ से इम्कान है कि तुम्हारे बदन में नजासत? तो ये रोजाना 5 वक्त की नमाज नहीं है, 5 बार एक दरिया में डूब कर निकलना है। इसके माने के 5 बार पाको पाकीजा होना है। किस तरह से पाकीजगी? हदस व खबस, हमारे पास है हदस व खबस। हदस क्या है? जिसके बाद आपको जो है गुस्ल वाजिब हो जाता है। खबस जिसके पास आपको धोना पड़ता, वॉशरूम गए धोना पड़ता, पाक करना पड़ता है। हदस व खबस से पाक होने के लिए वुजू और गुस्ल दिया गया ताकि इंसान पाक हो। ये हो गया जाहिरी। बातिन क्या है? बातिन ये कि सरकार ये कह रही है तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो बल्कि खूबसूरत दरिया है तुम्हारे ही घर के सामने। युफर्जरूनहा तफजीरा, कुरान की आयत के बारे में अलमीज़ान में बेहतरीन तफसीर की गई। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इंसान इस दुनिया में ताबे है नेचर का। ताबे के माने फॉलो करता है वो नेचर का। मसलन यहाँ हम लोग यहाँ पर हैं, बहुत से लोग मोमिनीन के मकानात भी जो हैं दरिया के बिल्कुल पहलू में, और बेहतरीन हवा आ रही है। हालांकि दरिया ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हवा अच्छी आ रही है और देखते मनाजिर भी अच्छे हैं। इंसान की ख्वाहिश होती है अल्लाह जब देता है तो दरिया के पहलू में रहें, अच्छे मनाजिर के पहलू में रहें। इंसान की ख्वाहिश है, बुरा नहीं है। इंसान चाहता है कि दरिया के और अच्छे मनाजिर के सामने रहना उसकी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, उसको पूरा करना चाहता है। ये फितरी ख्वाहिश है। इंसान ख्वाहिश रखता है अच्छा जिए। कहाँ जाता है? पानी के करीब जाता है, फिर जा कर के पानी को लेता है। जन्नत में मोमिन ताबे नहीं है पानी का, जहाँ

वहां बैठता है वो पानी ले लेता है। युफज्जिरूना तफजीरा की तफसीर में अलमीज़ान में अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि वहां इंसान को पानी की तलाश में जाना नहीं पड़ता बल्कि जहां पर वो चाहता है पानी ले लेता है। जिस तरह से दरख्त के बारे में किसी ने कहा मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से इमाम से फरमाया कि मौला लोग कहते हैं कि जो जन्नत का दरख्त था वो दरख्त किसी ने कहा खजूर का था, किसी ने कहा सेब का था, किसी ने कहा कुछ का है, किसी ने गेहूं के दाने कहा है। इमाम ने कहा कि तुम ये समझते हो दुनिया का दरख्त है, वो दरख्त ऐसा है कि जो इरादा करो वो फल ले लो। तो ये दरख्त आपके जैसा नहीं है, हमारे जहनों में है कि जहाँ पर अमरूद निकल रहे हैं तो अमरूद ही निकल रहे हैं, सेब निकल रहा है तो सेब ही निकल। जन्नत में ऐसा मसला नहीं है, तुम्हारा इरादा है, जो इरादा करोगे फल निकल जाएगा। तो ये ताबे है इंसान, तो कब इन मनाजिल को तय कर सकता है, जब वो सफाई इंसान के पास हासिल हो। चार मराहिल को मैं इस मंजिल पे बयान करना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं आप लोग, हैं ना सब लोग, इंशाल्लाह एक सलवात पढ़े मोहम्मद मेंटल हेल्थ में सबसे अहम चीज तहारत है, और तहारत के मनाजिल को तय करने के लिए तहारत जाहिरी तहारत बातिनी, एक आउटर और एक इनर। आउटर तहारत इंसान को नहाना धोना है, और इनर तहारत उसका दिल पाक होना है, उसके ख्यालात पाक होना है, उसकी फिक्र पाक होना। ठीक, इसके लिए मवाने क्या, हर्डल्स क्या हैं, वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो इसको माने हैं। चार माने हैं, चार चीजें हैं जो उसको मना करती हैं, यानी उसको हर्डल लगा देती हैं। नंबर वन, उसका नफ्स। इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, हजरत यूसुफ सूरह यूसुफ 12वां सूरह है, उसकी आयत। मेरे जवान बच्चे बहुत अच्छी तरह से गौर करें इसको। इन्ना नफ्स, ये यकीनन नफ्स जो है नफ्स अम्मारा है, सुना आप लोगों ने बहुत मरतबा नफ्स अम्मारा। अम्र के माने कमांड, इविल कमांडिंग सोल को कहते हैं नफ्स अम्मारा। एक ऐसी रूह, ऐसा नफ्स जो बार बार गुनाह पर वादार करता है उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। कैसे समझे मौलाना, मसलन स्कूल जाना ज़रूरी है, समझ कर जाना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, हाँ पढ़ना ज़रूरी है। अगर पढ़ना ज़रूरी है तो फिर ये गेम क्यों खेलना है। मेरे उस्ताद बहुत ही खुदा इंशाल्लाह दर्जात अली करे, बहुत बड़ा आलिम था मगर दुनिया ने नहीं पहचाना उनको, मौलाना रोशन साहब क़िबला, उनके फर्जंद जो है अली अब्बास शेख अली अब्बास, बहुत ही काबिल उलमा में से हैं। वो कहा करते थे दो चीजें मुझे समझ में नहीं आई, एक नंबर वन स्टूडेंट तालिबुल इल्म फेल कैसे होता है। तालिबुल इल्म है यानी जिसको इल्म का शौक है वो फेल कैसे होता है, मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ता जी। ये दो चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तालिबुल इल्म हो और फेल हो जाए, मुसलमान हो नमाज ना पढ़े। हमसे कहते मौलाना तबलीगी मजलिस पढ़िए, तबलीगी मजलिस क्या है नमाज, अरे मुसलमान से कहना पड़ रहा है नमाज पढ़ो, ये क्या बदबख्ती है भाई। मुसलमान कुछ कहना चाहिए दूसरे को, नमाज की हकीकत क्या है, नहीं कि मुसलमान से कहा जाए। तबलीग किसको होना चाहिए, दूसरे को होना चाहिए, मुसलमान को नहीं। आज का कौन सा दौर है, हमसे कहा जाता है कि तबलीग कीजिए। तो इंसान का नफ्स अम्मारा है, अम्मारा को समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये जो फोनों में पूरे वीक के बाद वीकली रिपोर्ट हामा लामा जी, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड ऑन योर स्क्रीन, कितने घंटे तुमने, बेहतरीन चीज़ अगर इस पर गौर करें तो लरस जाए इंसान, कितने घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। तो खुशन जवान बच्चों को देखना चाहिए, अगर मेरी स्कूल में मेरी रेटिंग कम हो रही है तो उसकी वजह क्या है, इसमें बाप को बोलने की क्या ज़रूरत है, माँ को बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें खुद देखना चाहिए। कुरान कहता है नफ्स जो है हर्डल है, इंसान का नफ्स जो है ये एक ऑब्स्टेकल।

शक्ल है और ये सामने तुम्हारे खड़ा हुआ है, इस कुप को चलना जरूरी है। और इसीलिए कुरान की आयत है नमाज शब के मुताबिक, इन नौशियत अल-लैल अशद्द वत्अ, बहुत ही खूबसूरत है, रात का उठना ही नफ्स को पामाल करने का जरिया है। अगर नमाज शब की पूरी 11 रकात की आदत नहीं है तो कम से कम एक रकात पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम एक रकात, 5 मिनट पहले उठ जाइए, उठ करके एक रकात नमाज वत्र पढ़िए, एक रकात नमाज वत्र। नमाज वत्र भी आधे घंटे की है, 5 मिनट की है, आप सिर्फ 5 मिनट की पढ़िए नमाज फज्र से पहले, और खुदा तौफीक दे आहिस्ता आहिस्ता से उसको बढ़ाते जाइए, फिर 3 रकात पढ़िए नमाज शब और नमाज वत्र, और अल्लाह से तौफीक की दुआ मांगिए, इंशाल्लाह 11 रकात भी नमाज पढ़िए। अगर आप इससे दूर होते चले जाइए तो आपके और आपके दरमियान नफ्स आता चला जाएगा, जब नफ्स आ जाएगा तो आप अपनी वाजिब नमाजों को की भी परवाह नहीं करेंगे, पढ़नी है जैसे पढ़ना चाहिए। ये क्या है, किसने बर्बाद कर दिया इसको, इन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, ये नफ्स अम्मारा है जो इंसान को बुराई की तरफ वादार कर रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि माइंड को सही तौर पे बाकी रख सकें, इस नफ्स को कंट्रोल करें, ये हर्ट को, ये हर्डल को समझें, ये सबसे बड़ा हर्डल कौन सा है, बाहर वाले नहीं हैं, खुद नफ्स है। और ये नफ्स कौन सा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी यवस्वसु फी सुदूरिन्नास, हमारे खून में आ जाता है, हमारे सिस्टम में आ जाता है, और हम ये समझ रहे हैं कि यही काम सही हो रहा है, आई एम गुड, नो नीड टू वरी, दुनिया करे मेरा दोस्त भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा, नहीं भी, तुमके दोस्त की कापी करना नहीं है, तुम इतने बुलंद हो जाओ कि तुम्हारी कापी दोस्त करे। मैं तो कहता हूँ आप अली के मानने वाले हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा के मानने वाले हैं, आपके दोस्त आपसे पूछना चाहिए, इतना आपके पास इल्म होना चाहिए, इसलिए कि आप उसके मानने वाले हैं, इल्म के मानने वाले हैं। तो अजीना अजीजान गिरामी, नफ्स बहुत बड़ा हर्डल है इंसान का, नफ्स जो हमेशा बीच में आता है, इसी नफ्स की वजह से इलनेस है मैन का, इंसान के जहन का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, ये नफ्स है। इस नफ्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करें, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, यू वी कमांड ऑफ योर ओन नफ्स रदर देन, देखिए आप खुद हाकिम बनिए नफ्स के, आप महकूम ना बनिए नफ्स के। क्या मतलब हाकिम बनिए, के मतलब ये कि यू शुड रन दी सेल्फ, तुम खुद अपने नफ्स को चलाओ, ना ये कि नफ्स चला रहा है। गेम शुरू हुआ, मेरा चचाजाद भाई ऑस्ट्रेलिया में वो भी ज्वाइन हो गया, मेरा मामूजाद अमेरिका में वो भी ज्वाइन हो गया, हम सब तीनों तरफ फैले हुए हैं, खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, अरे भाई क्या, माँ पुकार रही, बाप पुकार रहा है, क्या हो गया तुम्हें, क्यों तुम टाइम गुजार रहे हैं, तुम खुद एनालाइज करो टाइम को तुम जो गुजार रहे हो, ये क्या तुम्हारे लिए आइंदा जिंदगी के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, तुम खुद अंदाज, क्यों माँ बोले क्यों बाप बोले, तुम खुद रियलाइज करो। इसलिए कुरान ये कहता है कि इंसान मोमिन वो है जो काबिज हो नफ्स पर, यानी वो अपने नफ्स के घोड़े पर काबिज, अगर काबिज नहीं हुआ तो वो नफ्स आप पर काबिज हो जाएगा, जब आप पर काबिज हो जाएगा तो रेन ऑफ द सेल्फ किसके हाथ में है, नफ्स के हाथ में है, जब नफ्स के हाथ में गया तो वो पहुंचाएगा जिधर चाहे, लेकिन अगर आप कंट्रोल करें तो आप गाइड करेंगे तुम्हें किधर जाना है। सलावत पढ़िए मोहम्मद, बहुत ही अहम मेंटल हेल्थ के लिए, इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं है, नफ्स की कुदरत को अपने हाथ में रखना मोमिन का काम है। तो एनालाइज करो मेरे बच्चों, कोई भी काम करने से पहले, इसलिए हदीस क्या कहती है, हासिबु अनफुसकुम फी कुल्ले यौमिन, बोलिए हासिबु, पढ़िए मेरे साथ, हासिबु अनफुसकुम फी कुल्ले यौमिन, बोलिए हासिबु अनफुसकुम फी कुल्ले, हासिब असेस योरसेल्फ जी, हमारी कंपनी है, कंपनी में क्या करते हैं, सीए लगाते हैं, सीए क्या करता है?

अकाउंटिंग देखता है, वो बताता है कंपनी कितनी जा रही है, अच्छी जा रही है बुरी जा रही है। ये मालिक नहीं है, मालिक वो है, उसको खुद मालूम होना चाहिए कि उसकी कंपनी किधर जा रही है। अकाउंटिंग जो है वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज या उनके जो इश्यूज है उसके लिए है, लेकिन आपको खुद मालूम होना चाहिए आपकी कंपनी क्या जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना घाटे में, लूजर्स लूजर कुरान कह रहा पूरे इंसान घाटे में, यू आर लूजर है। इस घाटे से बचूं कैसे, इल्लल्लदीना आमनु व अमलुस्सालिहात, वही बच सकता है जो ईमान रखे और अमल, चार अरकान है ईमान अमल सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस। मैं देख रहा हूँ मैं अच्छा चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरा भाई जो है इसमें मुलविस है, तो जरा सा आहिस्ता से बैठ के उसको बहुत ही खूबसूरती से ऐसे समझाओ कि वो चिड़े भी नहीं बल्कि वो राह को सीधा कर सके। इसीलिए कुरान एक हिकमत बताता है, इंसान जब डीरेल्ड हो जाता है किसी भी मसले में उसको कैसे लाना चाहिए रेल पर, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, याद दिलाओ कॉन्स्टेंटली नफ्स को याद दिलाओ, यू आर इन रॉन्ग पटड़ी, सीधे आ जाओ अपने मकसद पे सीधे आ जाओ। यहाँ पर यह आया हूँ, एक जुमला एक फजीलत का आ गया है, देखिए दो पटड़ियाँ अगर चल रही हैं, एक पटड़ी अगर एक सेंटीमीटर हट जाए तो क्या होगा, द मोर यू गो द मोर डिस्टेंस, सीधी सीधी बात है। हाउ टू रेक्टिफाई, किस तरह से सही करें, गो बैक टू द पॉइंट ऑफ डिविएशन, उस पॉइंट पे जाओ जहां से डिविएट हो जाओ, फिर लाइन जो हो जाएगी सीधी। शायद इसीलिए सरकार ने कहा जो आगे गए हैं वो पीछे आ जाए जी, जो नहीं आए पहुंचे उनका इंतजार किया जाए। एक जुमला कहता हूं, विलायत विलायत वो नुकता है जिससे आगे बढ़ जाना भी तबाही, जिससे पीछे रह जाना भी तबाही। सलावत पढ़िए मोहम्मद बेहतरीन टाइमिंग, समझ में आ रही ना बात। तो इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान जो डीरेल्ड हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है, दीनदारी कम हो रही है, क्या करना चाहिए, हदीस कैसे असेस यूरसेल्फ, हासिबू अनफुसकुम एवरी डे असेस यूरसेल्फ, सोने से पहले। बेहतरीन चीज़ है एक चार्ट बनाए, मेरा कल का टाइम स्क्रीन टाइम कितना था और आज का कितना, उसके बाद एक ग्राफ बनाए, ऊपर जा रहा है तो कंट्रोल करें, कौन कर रहे हैं, आप खुद कंट्रोल हैं, कोई करने नहीं, बाप नहीं माँ नहीं, खुद कंट्रोल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, ना ये कि आप मर्जी के अंदर, तो मालिक के मर्जी बन जाइए तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। पहला मरहला है नफ्स का, दूसरा मरहला हर्ट जो है हमारा हर्डल दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया अल्लाह गुर्री गैरी, मौला फरमाते हैं किसी और को धोखा दे अली को धोखा ना दे। सामने मौला के अशरफियों के ढेर हैं, बैतुल माल है, गुर्री गैरी तल्लक्तो के थलाथन ला रजअत फीहा, ऐशो के कसीर अमलो के हकीर, निकल जा मेरे सामने, सूरत निकाल मेरे सामने, मैंने तीन बार मैंने तलाक दिया है, फिर पलट के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मौला अपनी शादी ही कब की थी। मगर मौला ने मिसाल दी है कि दुनिया को मेरा सा कोई राबेता नहीं है। मौला ने फरमाया कि अगर चूंटी के मुंह से दाना निकालना पड़े जुल्म से, मैं कायनात सहफ तकलीम सेवन हेवन की हुकूमत छोड़ दूंगा, ये जुल्म से चूंटी के मुंह से दाना नहीं। ये है अली है, सलावत पढ़िए दुनिया के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, ये दुनिया जो है हमको रंगीनियों में मुब्तला कर देती है। इसके माने नहीं कि कामयाब नहीं होना, मौलाना कि हम जॉब ना करें हम बिजनेस ना करें, ना, यू डू द बेस्ट बिजनेस इन पूरे बॉम्बे में, बेहतरीन बिजनेसमैन बनिए, इसमें कोई शक, इस्लाम ने रोका नहीं है, लेकिन कंट्रोल कीजिए, देखिए कि मेरा बिजनेस मेरे ईमान के मुकाबले में खड़ा है, तो उस वक्त कंट्रोल करना चाहिए। अगर ईमान बड़ा है तो मुझे ऐसा बिजनेस नहीं करना है जिसकी वजह से मेरे ईमान का सौदा कर सकूं, तो ये दुनिया भी हर्डल है। तीसरा हर्डल है शैतान, शैतान क्या है, कुरान की आयत, इन शैताना लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुआ,

तुम्हारा शैतान दुश्मन है, उसको दुश्मन समझो। तुम्हारा दुश्मन कौन है बोलिए? शैतान है दुश्मन। तो भाई दुश्मन नहीं है, चचा दुश्मन नहीं है, ताया दुश्मन नहीं है, बहन दुश्मन नहीं है, सास दुश्मन नहीं है, बहू दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? शैतान है। उसको पहचानो, शैतान को पहचानो जो तुम्हें दुश्मनी कर रहा है। अगर भाइयों के दरमियान परेशानी हो रही है, समझ जाओ शैतान ने अपनी गड़बड़ शुरू कर दी है। कभी भाई को जुदा करने वाली ना प्रॉपर्टी हो सकती ना माल हो सकती। सलावत पढ़िए। इन शैतान लकुम अदू फत्तखिदूहु अदू। शैतान की दुश्मन की शनाख्त एक बहुत बड़ा मौजू है। अंडरस्टैंडिंग द एनिमी, उसको कैसे समझना है। दुश्मन को पहचाने बगैर हमारा वेपन अभी नहीं होता। आज 46 इयर्स के बाद ईरान इस मंजिल पे कैसे पहुंचा? दुश्मन शनासी से पहुंचा। दुश्मन को अच्छी तरह से पहचाना कि यह है कौन। तो तैयारी 46 साल तैयारी की, एक दो दिन की नहीं, 46 साल तैयारी की। और तैयार होने के बाद ही फौरन बमबारी शुरू नहीं की जी। शहीद मुकामत हसन नसरुल्ला जैसी शख्सियत को मार दिया गया, कासिम सुलेमानी जैसी शख्सियत को मार दिया गया, आगे रईसी को मार दिया गया, सब जानते हुए। इतना सब्र, अल्लाह अकबर, ये अली का बेटा अली की गुलामी कर रहा है। तो यह दुनिया कह रही है ये जो हमला ईरान का है ये इंसान की बस की बात नहीं, इसके पीछे कोई और कुव्वत है। अभी तो समझो इमाम जमाना का। सलावत पढ़िए मोहम्मद। छियालीस साल सब्र किया, मगर अपने आप को तैयार किया। इतना तैयार किया, जब घर के साइंटिस्ट को मारा, जब घर के जनरल्स को मारा, अब कानून बैनुल मिलली के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत हमारे पास पूरी कुव्वत थी। अब इसका थप्पड़ पड़े, थप्पड़ ऐसा मारा कि उस वक्त खैबर को उखाड़ने वाला अली था, आज के खैबर को उखाड़ने वाला अली वाला। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग हुसैन शिया हजरात को सर उठा के चलने का जमाना, दुनिया सर उठा के चलना है। और अभी आप शर्मिंदगी से पहले मैं शिया बोलते सर अब जरूरत है। जी हाँ, मैं शिया हूँ। आज दुनिया भी जो लोग वहां भी जो अपने आप को सलफी कहते थे वो भी कह रहे हैं ये लीडर है। दुनिया ना सिर्फ ये कह रही कि हमारा लीडर है, दुनिया वाले कह रहे हैं अगर कोई है तो ये ही जवाब। तो ये कौन सा मकाम है? ये मकाम है जो दुनिया की शनाख्त करने वाला, पहचानने वाला, पहचान करके हमला करने वाला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, और खुदा इंशाल्लाह हमें समझने की तौफीक दे कि हम दीन को दीन से समझें। जी, दीन को दीन से समझे। बेदीन दीन नहीं दे सकता। जिसके पास दीन नहीं है वो दीन नहीं दे सकता, दीन ही दीन को दे सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आजिल फरज। इंसान का नफ्स है, दुनिया है और शैतान है। चौथी चीज इंशाल्लाह कल बयान करूंगा, आज मैं बोल दूंगा तो फिर कल कौन आएगा फिर इंशाल्लाह। दुनिया दीन और दुनिया खुद, ये दो अलग अलग रेलम है। रेलम और ई एल ए एल एम, रेलम, आलम दुनिया, आलम दीन, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। इसको समझना बहुत आसान नहीं है। शब आशूर एक शख्स पूरी रात अपने खेमे में टहल रहा है और देख रहा है एक तरफ दौलत है, माल है, खाना पानी है, इशरत है, ऐश है, गाने हैं, बजाने हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन टहल रहा है ऐसे जैसे जन्नत और जहन्नम के दरमियान टहल रहा है। और फजर का वक्त आता है, इमाम फरमाते हैं अली अकबर तुम अदान दो। अली अकबर से अदान दिलवाना शायद इस बात की दलील है कियामत तक कोई जवान नमाज को ना छोड़े। बेटा अली अकबर कौन है? अली अकबर सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में हूबहू नबी जैसा है, जिसकी सूरत

भी वैसी ही, आवाज भी वैसी। जब अली अकबर ने आवाज दी तो उधर हुर ने कहा बेटा मैं जा रहा हूं। अरे भाई बात बेहतरीन जगह है तुम्हारा, मुकाम तुम्हारा, 1,000 के बटालियन का सरदार, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ रहते हुए वहां जा रहे हो जहां पर खाना नहीं है, पानी नहीं है, भूख है, प्यास है। अब मैं जा रहा हूँ, जन्नत उतर। बेटे ने कहा अगर जन्नत है तो मुझे भी ले चलिए जी, जब जन्नत उधर है तो मुझे यहाँ क्यों रहना है। रिवायतें कहती हैं कि बाप बेटा बाँस में, अब ये जरा समय ऐसी चीज़ें नहीं बोला जो हमारे नॉर्म से हटकर है, सिर्फ चूंकि कमांडर थे 1,000 बटालियन के, सिर्फ अकेले नहीं आए थे, कुछ और ज़्यादा नंबर भी आए थे, तब भी जो है करबला के वाक़े पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। हजरत हुर मौला हुसैन की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में फौरन ख्याल आया बेटा मेरे हाथों को बांध दो, मेरे चेहरे पे नकाब डाल दो, इसलिए कि इन्हीं दो हाथों से मैंने मौला के दरवाजे को रोका। और मैं मौला को चेहरा बता नहीं सकता, मैं शर्मिंदा हूं, और तुम मेरे हाथों को बांध दो। बेटे ने हाथों को बांधा, चेहरे पर नकाब, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। उधर से मौला ने तरतीब दी है फौज, छोटी सी मुख्तसर सी फौज को, तकबीर की आवाज बुलंद हो गई, अल्लाह अकबर। मौला ने कहा अब्बास जाओ इस्तकबाल करो, जाइए ज़ियारतों को जाइए, अल्लाह ताला ले जाए, मारिफत के साथ ले जाए। जब कोई ज़ाहिर करबला के हुदूद में जाता है, मौला हुसैन कहते हैं अब्बास जाओ इस्तकबाल करो, मेरा ज़ाहिर आ रहा, जाओ इस्तकबाल करो, इस्तकबाल करो अब्बास, जाओ मेरा ज़ाहिर आ रहा है उसका इस्तकबाल करो। तारीख कहती है कि करीब होने लगे तो अली इब्ने हुर के बेटे ने कहा बाबा मंजिल करीब है, पैरों पर सर रख दिया मौला, क्या मुझ जैसा भी बख्शा जा सकता है, क्या मुझ जैसा भी बख्शा जा सकता है। इमाम ने हुर को उठाया, अपने सीने से लगा दिया। यही हमारा काम है, जब उनके कदमों पे गिर जाइए तो आपको उठा देंगे, इतना बुलंद कर देंगे कि सीने से लगा देंगे। इमाम ने सीने से लगाया, अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर तुम इस दुनिया में भी आजाद हो, उस आखिरत में भी आजाद हो। उन्होंने कहा अच्छा मौला मुझे बख्श दिया है तो जब मुझे मरने की इजाजत मिली। मौला ने कहा हुर तुम मेरे मेहमान हो, तुम मेरे मेहमान हो। रोने लगे, मौला मुझे मेहमान न कहिए, हम ही ने तो बार बार खुदूत लिख करके, हजारों खुदूत लिख करके बुलाया है, आप हमारे मेहमान हैं, हमें इजाजत दीजिए। बहरहाल बेटा और बाप गए मैदान में, एक तरफ हुर लड़ रहे थे, एक तरफ बेटा लड़ रहा था। बेटा जख्मी होकर गिरने लगा तो आवाज दी बाबा खुदा हाफिज। इधर हुर अपने घोड़े को तेजी से बढ़ाते हैं, बेटे के सराहने पहुंचते हैं, वहां जब पहुंचे तो क्या देखा, हुसैन अली हुर के बेटे के सर को गोद में लिए हुए हैं और तसल्ली दे रहे हैं, घबराना नहीं, तेरा बाबा अभी आया चाहता है। करीब जब हुर आए तो मौला आपने शर्मिंदा कर दिया, मुझसे पहले आ गए। मौला ने कहा दिया है हुर मैं नहीं चाहता था जवान बेटे की लाश पर ज़ईफ़ बाप पहले पहुंच जाए। ए हुसैन अली अकबर आवाज दे रहे, तो में है कि जब अली अकबर ने आवाज दी हुसैन गिरे, उठते जाते थे, गिरते जाते थे, पुकारते थे पिदर को, पिसर नहीं आया था, जिगर में दर्द है लगते जिगर नहीं आता, बस तलाश मिली तो लाश मिली, सीने पर अली अकबर के हाथ रखा, फवदा खद्दहु अला खद्द इब्ने, अपने गाल को अली अकबर के गाल में रख दिया, बेटा मैं आ गया बेटा उठो

0: इन भाइयों ने बसरे से खबर दी है कि बुस्र और मुगैरा दमिश्क की तरफ जा रहे हैं।
1: हाँ हर क्या खबर लाए हो?
2: मरवान बुजुर्गों और सिपाहियों के हमराह मदीने से निकल गया है और दमिश्क की तरफ जा रहा है।
1: लो पानी पियो और दिल ठंडा करो।
3: हमने बहुत दूर तक उनका पीछा किया, वो दमिश्क ही जा रहे हैं।
0: बसरे से खबर दी है कि बुस्र और मुगैरा दमिश्क के रास्ते में। मेरा ख्याल है कि अब माविया यजीद की बैत का मुकदमा फराहम करेगा।
2: यजीद के लिए बैत? लेकिन उसने सुल्ह नामे में वादा किया है कि अपने बाद कोई जानशीन मुकर्रर नहीं करेगा।
0: खुद उसी ने कहा है कि सुलनामा मेरे कदमों के नीचे।
3: वो मुसलमानों का क्या जवाब देगा?
0: कुछ नहीं, वो अपना असली चेहरा जाहिर करेगा और ये वही चीज है जो हसन इब्न अली चाहते हैं।
4: अब समझ में आता है कि उसके दिमाग में क्या है और क्या करना चाहता है।
2: अब हकीकतन आबा मोहम्मद की जान खतरे में है। मुआविया के पास यजीद को तख्त खिलाफत पे बिठाने के लिए यही रास्ता है कि उनको रास्ते से हटा दे।
0: हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। अब अबा मोहम्मद को हमें जल्द ही बाहर निकालना होगा। मैं सईद हर्ब और अहमद मदीना जाएंगे। अगर कुछ दिनों तक कोई खबर न मिले तो सब मुंतशिर हो जाना और अपने आप को छिपा लेना। चलो
3: आप लोग बैठे हैं, हम चले जाएंगे।
4: सरदार सरदार, सूरज निकल गया, दरवाज़ा खोल दूँ? दरवाज़ा खोल दूँ सरदार? सरदार दरवाज़ा खोल दूँ? दरवाजे के बाहर लोग जमा हो गए हैं।
5: ओ दरवाजा खोल दो।
1: सच पूछो तो वो जानता है कि वो मर्द मैदान में, और अगर सच्चा है तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए।
6: अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला।
1: अलैकुम अस्सलाम। अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।
6: पहले पानी पिलाओ फिर बात करूंगा।
1: पानी भी पिला देंगे।
7: सलाम।
2: शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। घोड़ों को यही हाँ ठीक कह रहे, पैदल जाएंगे तो लोगों की तवज्जो हमारी तरफ कम होगी।

0: हर हसन इब्न अली के घर का रास्ता बंद कर दिया। देखो
1: उसकी हिम्मत कैसे हुई?
0: नहीं मालूम।
2: हमें क्या करना चाहिए?
0: कैस और सईद का इंतजार करते हैं।
1: कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ यहां से।
0: वो दोनों आ गए।

0: और सलीम ने अली के घर का दरवाजा बंद किया हुआ है।
1: वो देखो शिमर,
2: हमें घूर रहा है।
1: चलो मस्जिद चलते हैं।
3: गिरफ्तार कर लो, नहीं भाग देना, मुहासरा कर लो। मुद्दत से एक दूसरे को नहीं देखा।
4: मैं जब जंगल में कोई लोमड़ी को देखता हूं तो तुम्हें याद कर लेता हूं।
3: तो मेरी दीदार से महरूम नहीं हो तो जान लो कि ये लोमड़ी भी शेर की तरह खूंखार दांत रखती है।

0: जनो अंदर जाओ।
1: अहमद अहमद
2: अब तुम सब एक तरफ बैठ के अपने तारीख मुस्तकबिल का सोचते रहो। वो दिन दूर नहीं कि मदीने के मैदान में एक एक करके तुम सबकी गर्दनें अपने तन से जुदा करूंगा।

0: तुम लोग किस तरह गिरफ्तार हुए?
1: हमारे इंतजार कर रहे थे, हम मैदान में पहुंचे तो हमें गिरफ्तार कर लिया।
0: हमने कुछ नहीं बताया।
1: मुझे यकीन है।
2: हम लोग अबा मोहम्मद के लिए परेशान हैं। तुम्हें उनकी कोई खबर है? उनके बारे में कुछ नहीं जानते? वो सलामत हैं?
0: हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो जिंदान में कोड़े खा रहे थे। इब्ने उमर और अशरस ने तुम्हारी निशानदेही की।
3: हाँ, शिमर कस्र में है और वो दोनों हसन इब्न अली के घर में है और आपस में इनका रब्ता है। नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं।
4: हम भी बहुत परेशान हैं, कहीं कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे।
0: कोई परेशानी की बात नहीं, मैं वादा करता हूं कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ।
2: तुम्हें क्या मालूम है?
0: लोगों को नहीं देखा, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने काम कारोबार में मसरूफ हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो मदीना ऐसा होगा।
2: शायद तुम ठीक कह रहे हो।
0: अजीब है,
1: अजीब
0: हैरत की बात है। ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं है?
2: हकीकत में तुम्हारा दिमाग अच्छा काम करता है।
0: अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस यहां से निकलते हैं और जाके अपने मौला का हाथ चूमते हैं।
1: लेकिन किस तरह?
0: तुमने पूछा क्या करना है, मैंने बता दिया। अब कैसे करना है ये तुम बता दो।
1: शेमर, एक बुरी खबर लाया हूं।
2: तुम लोग जाओ। कौन सी खबर?
1: अशअस मर गया है।
2: अशअस मर गया? कब?
1: कल रात।
0: नहीं पता, शायद आज सुबह, बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: वाह, सब कुछ खराब हो गया, अब क्या करें?
0: नहीं मालूम। लेकिन
2: जोदा से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं?
0: अच्छे हैं, मुझे अम्मू कहती है।
2: तुम उसी घर में उसी तरह रहो, कोशिश करो कि जोदा से जितना जल्द हो सके करीब तर होते जाओ। अब इसके बाद अशहस की जिम्मेदारी तुम ले लो, तुम ये कर सकते हो।
0: शायद कर सकूं।
2: तुम कर सकते हो, बिल्कुल करना पड़ेगा।
1: शेम्स,
0: वो अशअस के हिस्से का क्या बनेगा?
2: क्या मकसद?
0: मेरा मतलब मरवान का वो 1 करोड़ है, अब जबकि अशअस मर गया है।
2: हाँ मुझे मालूम।

0: लोग बेसब्री से अमीरुल मोमिनीन के तशरीफ लाने का इंतजार कर रहे हैं।
1: बुसर इब्ने अर्ताहत आ गया है।
0: हाँ अमीर, और उसके हमराह बसरे के तमाम बुजुर्गान भी आए हैं और वो सब अपनी अपनी मखसूस जगह पर बैठ चुके हैं। और मैंने भी अमीर की इजाज़त से दमिश्क के तमाम बुजुर्गान को दावत दे दी है ताकि काम के मुकदमात आज ही फराहम हो जाएं।
1: अच्छी बात है, तुमने भी कोशिश कर ली अपने रकीबों से पीछे न रह जाओ। ए यजीद, उस हैवान को दूर करो और मेरे साथ आ जाओ। मुझे तवक्कु है कि लोग उसे मेरा जानशीन मान लें। चलो,

0: Быстро. मुगैरा तुम कैसे हो? कूफे की क्या खबर?
1: मुसलमान आने कूफा अमीर की सलामती की दुआओं में मशगूल हैं।
0: हाँ मेरे भाई, क्या मदीना अब भी हमारी हुकूमत का हिस्सा है?
2: जी ऐसा ही है मेरे अमीर, और इस वक्त मदीने के अशराफजादे अमीरुल मोमिनीन के साथ तजदीद बैत के लिए आमादा हैं।
0: अच्छी बात है। हाँ मेरे भाई, मैंने तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी दी थी, उसका क्या हुआ?
2: कोशिश जारी है मेरे अमीर। अशहस ने हसन इब्ने अली के घर में अपना ठिकाना बना लिया है, जल्दी ही काम तमाम हो जाएगा।
0: जल्दी करो, जल्दी। तुम जानते हो कि मैं सब्र करने वालों में से नहीं हूं। यजीद आओ मेरे साथ।

0: माफ कीजिएगा बानू, आपसे कुछ कहना चाहता था।
1: जाओ छोड़ो मुझे, हाल खराब कर दिया मेरे हाथों को चूम के।
0: अभी खबर मिली है कि अशरफ इब्ने कैस मर गया है।
2: मर गया?
0: जी मर गया है।
3: हाय।

0: मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे कुछ तो दुनिया की लज्जत का मजा चखने दो।
1: मैं मुतमईन हूँ कि अमीरुल मोमिनीन का जोश खरोश हजार गुना मेरे एहसास से ज्यादा है, इसलिए कि वो हकीकत में यजीद के बाप हैं और मैं तो यजीद की मजाजी माँ ठहरी।
0: सच कह रही हूँ, मैं इस बेटे को अपनी दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा चाहता हूँ।
1: मैं अमीरुल मोमिनीन के ऐश में खलल डालना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ कि जान सकूं कि उनके दिल में कोई तारीख धब्बा और पेचीदा नुक्ता तो नहीं। क्या वाकई मुस्तकबिल की खिलाफत यजीद को मिलेगी और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी?
0: मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मरवान इस काम पे लगा हुआ है। अशस ने हसन इब्न अली के घर पनाह ले ली है और अब ये काम जल्द तमाम हो जाएगा।
1: जहां तक मुझे खबर मिली है, अभी इस काम के होने में काफी वक्त लग सकता है। और ये भी खबर मिली है कि अशस इब्न कैस मर चुका है और उसकी बेटी इस काम पर आमादा नहीं है। अब हमें इसका हल तलाश करना होगा।

0: कि वो इस काम को इजरा करें।
1: तुमने कोई और तदबीर भी सोची है?
0: सबसे बेहतरीन तदबीर वही है जो अमीरुल मोमिनीन सोचते हैं। अब सिर्फ इस काम के इजरा में जल्दी करना चाहिए ताकि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म जल्द से जल्द इजरा हो जाए।
1: जल्दी बताओ ताकि इत्मीनान हो।
0: अब मैं चाहती हूं कि खुद मरवान के साथ मदीना चली जाऊं और फरमान के इजरा होने पर नजर रखूं। जोधा औरत है, हम औरतें एक दूसरे की जबान बेहतर समझती हैं और जल्दी एक दूसरे से मुतमईन हो जाते हैं।
1: वल्ला ऐसी पसंदीदा ख्वाहिश मुझसे अब तक किसी ने नहीं की। जाओ जो चाहते हो कर डालो ताकि कुछ दिन मुझे तुम्हारे वजूद से नजात मिले।

0: साद इब्ने अबी वक्कास शहर के दरवाजे से निकल चुका है।
1: अभी वकास वो शहर में क्या कर रहा है? किसी को भेजो कि इब्ने ज़िलजोशन को खबर दे।
2: Thank you.

0: और हमेशा से साद इब्ने अबी वक्कास को काबिल एहतराम जानता हूँ।
1: मरवान इब्ने हकम मुझसे क्या चाहता है?
0: वो आपसे क्या चाहेगा सिवाय इसके कि सरदार अरब का एहतराम बचा लाए।
2: मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है।

0: मेरा दिल कहता है वो कबूल करेंगे।
1: मुझसे एक अहद करोगे अबू उमर?
0: कैसा अहद?
1: ये कि फरजंदे अली हसन की हिमायत में हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें।
0: अली से मैंने सुना था कि मरवान का हाथ खयानत का हाथ है, 40 दफा बैत करेगा और फिर भी तोड़ देगा।
1: वाह हो मुझ पर, मैं गफलतों में घिरा हुआ था लेकिन अब नहीं हूं। माविया की गुस्ताखियों ने मुझे बेदार कर दिया। अबू उमर, तुम्हें तुम्हारे बेटे की कसम, मुझे इस अजाब से निजात दो ताकि मैं अपने गुज़िश्ता गुनाहों की तलाफी कर सकूं। माविया के नौकरों, चमचों और नमकखारों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, कोई राह नजर नहीं आती। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, मदद करो, मुझसे वादा करो, और अगर जर्रा बराबर भी वादा खिलाफी मुझसे देखी तो अपनी तलवार से मेरे 2 टुकड़े कर देना।
0: सबसे पहले अबा मोहम्मद के साथी जो तुम्हारी कैद में है उन्हें आजाद कर दो।
1: ठीक है,
0: इसी वक्त।
1: ठीक है, इसी वक्त।
0: तो चलो,
1: आओ चलो। बेहतर है कि 2-4 लुकमे मुंह में डाल लो फिर चलते हैं।
0: पहले तुम उनको आजाद कर दो। तुम लोग बैठो और कुछ खा लो ताकि मैं हो आऊं। शायद आज रात हम दारुल खिलाफा में गुजार लेंगे।
1: हाँ साथ, कम से कम ये शहद का शरबत तो पीते जाओ, कुछ तो गला तर हो जाए।

0: ये क्या हो रहा है?
1: वो बूढ़ा कौन था?
2: ये साद इब्न अबी वक्कास तो नहीं था?
1: हाँ वही था। ये लोग क्यों इस तरह आके चले गए? वो बुड्ढा जमीन पे क्यों गिर गया? लगता है हमारी खैरियत पता करने आए थे।
0: क्या साथ भी माविया से मिल गया है?
2: नहीं मालूम, लेकिन जमीन पे ऐसे लौट रहा था जैसे कि जान देते।
0: हम तो यहाँ कैद में हैं, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें परेशान होने की क्या जरूरत है?

शऊर भी नहीं था। हम दुनिया में आए तो अपनी मर्जी से नहीं आए, उसने चाहा तो आए हैं। उसने ज़िंदगी अता की, ज़िंदगी का अजीम सरमाया उसने अता किया। वो अगर अता ना करता तो हम दुनिया में ना आते। जितना शुक्र अदा करें उसकी बारगाह में कम है कि उसने हमें लिबास वजूद से हमें आरास्ता किया। वो खुदा जो बिन मांगे इतना अजीम सरमाया दे सकता है, वो मांगने के बाद हमें क्या कुछ नहीं दे सकता। उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं है। हमने समझा नहीं उसको, हमारा जहन बहुत ही महदूद, सोच भी महदूद। खुदा को भी हम अपने आप से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कहाँ मखलूक कहाँ खालिक। रिवायत में है, बहुत खूबसूरत हदीस है, इसको आप ले जाइएगा। उसकी बारगाह को समझें, उसकी अजमत और कुदरत को समझें। रिवायत में है कि वो इतना बड़ा खालिक है, उसका दरबार इतना बड़ा है कि अगर हर इंसान उस खुदा से एक कायनात मांगेगा तो वो दे सकता है। हर एक इंसान उस खुदा से एक यूनिवर्सल मांगे, एक पूरा आलम मांगे। घर की बात क्या, एक बिल्डिंग की बात क्या, एक महल्ले या शहर की बात क्या हो रही है, एक हुकूमत की क्या बात हो रही है, हर इंसान उसकी बारगाह से एक एक कायनात मांगे तो क्या उसके खजाने में कुछ कमी हो जाएगी? क्या वो दे नहीं सकेगा? हर इंसान को वो कायनात दे सकता है। पर सवाल ये है कि हम उससे कायनात क्यों मांगे? जिसके पास मौलाए कायनात हो वो कायनात लेकर क्या करेगा? उसकी बारगाह में किसी चीज की कमी ही नहीं है, वो अता कर सकता है। मांगने में कमी हो सकती है, अता करने में कुछ कमी नहीं हो सकती। ये उसका लुत्फ करम है, उसने दुआ का दरवाज़ा भी खोल रखा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि, मुनाजात खमसा अशर पढ़िए, बहुत खूबसूरत मुनाजाते हैं। मुनाजात ज़ाकिरीन है, एक जिक्र करने वालों की मुनाजात। इब्तदाई जुमलों में इमाम फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, तेरी बारगाह इतनी अजीम है कि मैं, अगर तूने हुक्म ना दिया होता जिक्र करने का तो मैं हरगिज जिक्र ना करता। अगर तूने हुक्म ना दिया होता तो मैं जिक्र ना करता, इसलिए कि मैं जिक्र करूंगा अपनी मकदूर के मुताबिक, इससे तेरा हक अदा नहीं होता। लेकिन चूंकि तूने हुक्म दिया है लिहाजा जिक्र कर रहा हूं। उसके बाद मारिफत का दूसरा जुमला सुनिए, बहुत खूबसूरत जुमला है। इमाम फरमाते हैं कि ए खुदा, अगर तूने दुआ करने का हुक्म ना दिया होता तो मैं तुझसे दुआ भी ना करता, इसलिए कि मुझे क्या हक है कि मैं तुझसे दुआ मांगूं? इसलिए कि दुआ को मैं तेरे इरादे में खलल समझता हूं। और नहीं किया आपने, तेरे इरादे में खलल, मुझे क्या है हक है कि तेरे इरादे में खलल डालूं? दुआ में इंसान क्या करता है? मांगता तो है ना, ये दे ये ना दे, ये दे ये दे ना दे, ने सेहती दे बीमारी ना दे, माल दे गुर्बत ना दे, यही तो मांगता है। यानी उसके इरादे में खलल है। हम कौन होते हैं उसके इरादे में खलल डालने वाले? लेकिन उसका लुत्फ व करम देखिए, फिर भी उसने तौबे का दरवाज़ा अपने बंदों के लिए खोल रखा है, दुआ का दरवाज़ा उसने खोल रखा है। तो आइए उसी की बारगाह से मांगें। तो क्या मांगें? हयात तैयबा, पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी। जो ज़िंदगी दे रहा है वही पाक ज़िंदगी भी देगा, लेकिन उसने शर्त रखी है, कंडीशन रखे हैं। बगैर शर्त के वो ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। पहली शर्त ईमान, वह हुआ मोमिनुन। दूसरी शर्त अमले साले हो, नेक अमल हो, साले अमल हो। और अमले साले के लिए शर्त है इखलास।
ان جو بھی عمل ہو صرف خدا کے لیے

0: محمد وعلى محمد بارك.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: कहने लगे कि आपने इतनी बड़ी मस्जिद बनवाई, कई मदरसे आपने बनवाए, कई किताबें आपने लिखी, हजारों शागिर्दों को आपने तरबियत दी. तो उन्होंने जवाब में यही कहा कि जो अमल तुम्हारी निगाहों में बड़ा है, क्या पता कि खुदा की निगाह में भी बड़ा है कि नहीं है. लोगों की निगाह में कोई अमल बड़ा हो, यह ज़रूरी नहीं कि खुदा की निगाह में भी बड़ा हो. हमारी निगाहों में ज़ाहिरी तौर पर हम अमल को देखते हैं, वो खुदा तुम्हारी नीयतों को देखता है. और इनकी इतनी पाको पाकीज़ा ज़िंदगी, बहुत पाको पाकीज़ा ज़िंदगी है कि खुद फरमाते हैं कि जब मैं नमाज शब के लिए उठता था सहर के वक्त, तो मैं अपने इन्हीं ज़ाहिरी कानों से मलाइका का जिक्र सुनता था. देखिए, सुनने वाले कान चाहिए. जिक्र तो हर तरफ फरिश्ते करते हैं, बल्कि हर मखलूक खुदा की तस्बीह में मसरूफ है. इन मिन शय इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दे, कोई मखलूक कोई शय नहीं है मगर ये कि उसकी तस्बीह करती हो. वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन हम हैं जो उनकी तस्बीह को समझते नहीं हैं. हमारे पास सुनने की सलाहियत नहीं है. ये दरख्त, ये चरिंद, ये परिंद, ये नबातात, ये पत्थर, ये सब खुदा की तस्बीह में मसरूफ हैं. कोई एक भी मखलूक ऐसी नहीं है जो नाफरमान हो. अगर कहीं नाफरमानी नज़र आती है तो वह हज़रत इंसान में है. इतनी सारी नेमतों के मिलने के बावजूद भी नाफरमानी करता है. खुद आयतुल्लाहिल उज़्मा अब्दुल करीम हायरी के लिए भी ये मिलता है कि वो खुद कहते हैं कि मैं जब सो जाता था तो नमाज शब के लिए फरिश्ते मुझे जगाने के लिए आते थे. सहर के वक्त आकर मेरा शाना हिलाते थे, मुझे बेदार करते थे. अलार्म से बेदार होना और है, फरिश्ते किसी को बेदार करें यह और बात है. ये पाक जिंदगी है, तैयब व ताहिर जिंदगी है. कुरान में पढ़िए, दो लफ्ज़ आपको मिलेंगे, पूरी तरह से तवज्जो से सुनिएगा, मुखलिस और मुखलस. जिसकी जमा है मुखलिसीन मुखलसीन. मुखलिस किसे कहते हैं, मुखलस. देखिए, एक जेर और ज़बर का फ़र्क है. अरबी बहुत ही जामिया ज़बान है. एक ज़ेर व ज़बर में क्या से क्या हो जाता है, हुकूमतें ज़ेर व ज़बर हो जाती हैं. मुखलिस मुखलस. मुखलिस किसको कहते हैं, जिसका अमल खालिस हो. अगर इंसान ने कोई अमल अंजाम दिया खुदा के लिए तो उसको कहते हैं मुखलिस, ये इंसान मुखलिस है, ये मोमिन मुखलिस है. लेकिन मुखलस उस इंसान को कहते हैं जिसका पूरा वजूद खालिस हो. पूरा वजूद, पूरी जिंदगी खालिस हो. मुखलिस होने के बाद भी गुमराही का खतरा है, वो शैतानी वसवसे में आ सकता है. इब्तिदा में किसी के लिए इखलास रहता है, लेकिन ज़माने के साथ साथ वो इखलास चला जाता है. ये मुखलिस है जिसका इखलास छीनने का ख़तरा है. लेकिन जो मुखलस हो जाता है उसके करीब शैतान आ ही नहीं सकता. फबिइज्जतिका लाउग़वियन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन. उसने खुदा के इज्जत की कसम खाई है कि मैं सबको गुमराह करूंगा, सबको बहकाऊंगा, सबको रास्ते से मुनहरिफ करूंगा, लेकिन तेरे जो मुखलस बंदे हैं मैं उनके करीब जा नहीं सकूंगा. इसमें वो ताकत ही नहीं है, उसमें वो जुरअत ही नहीं है कि जो मुखलस बंदों तक पहुंच जाए, वो जा ही नहीं सकेगा. अल्लाहु अकबर. ये मेयार है पाक ज़िंदगी का. ये मखसूस मकाम है अहले बैत का, औलियाए खुदा का, असफियाए खुदा का और बंदगान ख़ास से खुदा का, जो मुखलस हैं, जिनके करीब शैतान आ ही नहीं सकता. देखिए, अमल अंजाम देना काफ़ी नहीं है, اس کو صرف خدا کے لیے مخصوص

कर देना जरूरी है। जो बहुत बड़ी रुकावट है हमारे लिए हयाते तैयबा में, पाक जिंदगी में, वो दुनिया परस्ती है। दुनिया में जीना और है, दुनिया के लिए जीना और है। खुदा ने हमको दुनिया में पैदा किया है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं पैदा किया गया, अपने लिए पैदा किया है। दुनिया परस्ती बहुत खतरनाक चीज है, और इस दुनिया परस्ती में क्या चीज आ जाती है? शिकम, शहवत और शोहरत। तीन शीन है, उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। शिकम, शहवत और शोहरत। शिकम परस्ती, शहवत परस्ती और शोहरत परस्ती। शिकम परस्ती क्या है? खाने के लिए, पूरा हम व गम खाना है। याद रखिएगा, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। बाज़ लोगों का पूरा हम व गम ही खाना है, आज वो डिश तैयार करो, आज वो डिश तैयार करो, आज ये खाएंगे, आज उस होटल में जाएंगे, इस होटल में जाएंगे। ऐसा लगता है कि गोया खाने ही के लिए पैदा किए गए हैं। मुझे यहाँ की बात नहीं मालूम है, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। माह रमज़ान में हालत ये होती है कि पूरी रात स्टॉल लगे रहते हैं, पूरी पूरी रात होटल्स खुली रहते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगे रहते हैं, तरह तरह के डिशेस, खाने, कबाब, सब कुछ तैयार रहता है। पूरी पूरी रात लोग जो है अपनी अपनी फैमिलियों को लेकर जो है आज वो उस होटल में, आज इस होटल में घूमते रहते हैं। दिन भर जो भूखे रहे उसका कवर करना चाहते हैं। अब दिन भर भूखे तो रहे ना, बाज़ लोग यहाँ तक बताते हैं कि मौलाना हम क्या करें, माह रमज़ान में बजट हमारा डबल या ट्रिपल हो जाता है। देखिए रोज़े का फलसफा कैसे फौत होता जाता है। खुदा ने रोज़ा वाजिब रखा ताकि तुम्हें गरीबों की भूख और प्यास का एहसास हो और तुम अपनी ज़िंदगी में गरीबों को शामिल करो। जो माह रमज़ान में खर्च में से बच जाता है वो गरीबों की सेवा करो, गरीबों का ख्याल करो, गरीबों की इमदाद करो। लेकिन इनका खाने ही में बजट इतना ज़्यादा हो गया, पूरी पूरी रात घूमते हैं, आज इस होटल में, आज उस होटल में, पूरी टहल टहल के पूरी रात खाते हैं, यानी आम दिनों से ज़्यादा इनका बजट हो जाता है। ये है शिकम परस्ती, जो खुदा की राह में रुकावट बन जाती है, शिकम परस्ती। और उसके आगे आइए, जब शिकम से इंसान सैर हो जाता है तो शहवत में लग जाता है, शहवत रानी में लग जाता है, शहवत परस्ती में। ये भी नहीं देखता कि हलाल है या हराम है। खुदावंद आलम ने खाने के रास्ते मुहैया किए हैं, शहवत के रास्ते मुहैया किए हैं, लेकिन हलाल रास्ते बताए हैं। हलाल रास्तों को छोड़कर हराम रास्तों का इंतखाब करता है। जब शिकम से सैर हो गया, शहवत से भी सैर हो गया, तो अब तीसरे मरहले में आता है वो शोहरत। शोहरत परस्ती में इंसान अपने आप को मसरूफ कर देता है, मशहूर होना चाहता है, फेमस होना चाहता है। अब खाने की तरफ ध्यान ना रहा, अब शहवत की तरफ ध्यान ना रहा, अब लोगों में मैं मशहूर हो जाऊं, फेमस हो जाऊं, लोग मुझे जानने लगें, हर तरफ मेरी पहचान हो, मेरा ही नाम हो। ये लोगों की तरफ से ये कितने दिन तक आपकी शोहरत रहेगी, ये लोग कब तक जिंदाबाद जिंदाबाद कहते रहेंगे? जो लोग आज जिंदाबाद जिंदाबाद कहेंगे, वही वो लोग तुम्हें एक दिन मुर्दाबाद मुर्दाबाद भी कहेंगे। शोहरत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, अगर मकसद मशहूर होना है, फेमस होना है। देखिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है? हिमालया हिल्स, इतना फेमस है, हर कोई जानता है। अगर शोहरत के लिए तुमने जिंदगी गुजारी है तो तुमसे बेहतर वो हिमालया है, पहाड़ है, पत्थर है। तो अगर तुम फेमस हो गए, मशहूर हो गए, तो तुमने कमाल क्या कर दिया? तो एक साहब कहने लगे, मौलाना नहीं, मेरी शोहरत चाहिए, मेरा नाम हर तरफ लिया जाए, मैं घर से निकलूं तो लोग देखने के लिए आए, लोग मुझे देखने के लिए आए। तो इसमें आपका क्या कमाल है? एलिफेंट भी जब कभी रास्ते से गुजरता है तो उसे भी दो लोग देखने के लिए आ जाते हैं। अगर आपको देखने के लिए आ गए तो कमाल क्या है?

कोई कमाल नहीं है। याद रखिएगा, लोगों की नजरों में आने की कोशिश ना करें बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करें। लोगों के दिलों में जगह बनाएं, लोगों की नजरों में आ जाएं, ये काफी नहीं है। आज नजरों में हैं, कल नजरों से गायब हो जाएंगे। शिकम परस्ती, शहवत परस्ती और शोहरत परस्ती, याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत हदीस है, पाक जिंदगी के लिए, तैयब व ताहिर जिंदगी के लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। नहजुल बलागा की मौला अमीर की हदीस है, जोरदार सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं, खालतुन्नास मुखालततन इन इश्तुम हन्नु इलैकुम व इन मुत्तुम अलैहा बको अलैकुम। लोगों के साथ इस तरह से घुल मिलकर रहो कि अगर जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें, और अगर तुम दुनिया से चले जाओ, मौत आ जाए, तो लोग तुम पर गिरिया करें। ये पाकीज़ा ज़िंदगी की अलामत है, ये तैयब व ताहिर ज़िंदगी की अलामत है कि इंसान ऐसे ज़िंदगी गुजारे कि लोग उससे मिलने की तमन्ना करें, मिलने का इश्तियाक अपने जहन में रखें, और जब वो दुनिया से चला जाए तो आप पर आंसू बहाएं। शिकम परस्ती, शहवत परस्ती और शोहरत परस्ती बड़ी ख़तरनाक है, हयात तैयबा की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। याद रखिएगा, अगर खुदा किसी को इज्जत देना चाहता है तो दुनिया उसे जलील नहीं कर सकती, और अगर खुदा किसी को जलील कर दे तो दुनिया उसको इज्जत दे नहीं सकती। तो इज्जो मंतशा व तो दिल्लो मंतशा, कुरान मजीद में इस तीन जमीआन को याद रखिएगा, जमीआन, ये अगर पूरी तरह से इसका फलसफा समझ में आ गया तो यकीन जानिए हमारी जिंदगी तैयब व ताहिर हो जाएगी। इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआन, अन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीआ, फलिल्लाहिल मकरो जमीआ। तीन जमीआ को अच्छी तरह से याद रखिएगा। इज्जत, तमाम इज्जत, जमी इज्जत अल्लाह के लिए, वही अजीज है और वही इज्जत देने वाला है, इज्जत सब कुछ अल्लाह के लिए। व अन्नल कुव्वत लिल्लाह जमिया, ताकत कुदरत पावर अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास है, कोई कवि हो ही नहीं सकता, सिर्फ कुव्वत और ताकत उसके पास है, या उसके पास है जिसको वो कुदरत व ताकत दे दे। तो ताकत व कुव्वत या अल्लाह के पास है या यदुल्लाह के पास है। अन्नल कुव्वत लिल्लाह जमिया, फलिल्लाहिल मकर जमिया, तदबीर उमूर, तुम्हारी जिंदगी को चलाने वाला, तमाम उमूर को तदबीर करने वाला वो ज़ाते परवरदिगार है, कोई और नहीं है, किसी और दर पे जाइएगा नहीं, खुदा की बारगाह में आइए, वही तदबीर उमूर करने वाला, तुम्हारे ज़िंदगी के सारे मसाइल को चलाने वाला। देखिए, खुदा ने जिसको बाकी रखा वो आज भी बाकी है। कुरान मजीद की मिसालें पढ़िए, आपको पता चलेगा कितने हज़ारों साल गुजर गए। जनाब मूसा की इज्जत है या फिरौन की, जनाब इब्राहिम की इज्जत है या नमरूद की, रसूल अल्लाह की इज्जत है या अबू जहल की, अली मुर्तदा की इज्जत है या माविया की, इमाम हुसैन की इज्जत है या यजीद की, बनी हाशिम की इज्जत है या बनी उमैया की, ये इज्जतें कौन अता करने वाला, वो ज़ाते परवरदिगार। अल्लाहु अकबर। कुव्वत उसके पास, इज्जत उसके पास, उमूर की तदबीर उसके पास, कहीं और है ही नहीं है। वो खुदा जिसकी ज़िंदगी को पाक बना देता है तो उसकी ज़िंदगी के ज़रिए से दूसरों के दिलों में रोब और हैबत डाल देता है। आज भी हमारे पास जो उलमा मराजे मुश्तहिदीन मौजूद हैं,
ظاہری طور پر دیکھیں ان کے پاس اسباب زندگی کچھ نہیں ہے، سادہ سیدھا مکان ہے۔

सादी जिंदगी है, लेकिन क्या रोब है, क्या हैबत है पाकीजा जिंदगी के अवज, तैयबो ताहिर जिंदगी के अवज, खुदा ने क्या रोब दिया है। आप उठाकर देखिए, बहुत सारे आपको फोटोज या यूट्यूब में भी वीडियोस मिलेंगी, जब दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट इनसे मिलने के लिए आते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे कोई मुजरिम बैठा हो मुंसिफ के साथ, दोनों बाजुओं को झुका के, बड़े बड़े

लेकिन अगर इंडिया ही में कोई इंडिया का मुजरिम पकड़ा जाए तो इंडिया वालों को इख्तियार है कि जहां चाहें उसको या सज़ा दें या माफ़ कर दें। अब इमाम हुसैन की देखिए कितनी अजीम बारगाह है, ये करीम इब्ने करीम है, जो भी इस बारगाह में आता है वो माफ़ हो जाता है। आसमानी फरिश्ते को माफ़ किया, ज़मीनी इंसान को माफ़ किया, माफ़ करके इमाम हुसैन बता रहे हैं कि जितना इख्तियार मेरा ज़मीन पर है उतना ही इख्तियार आसमानों पर भी है, जितना इख्तियार मेरा इंसानों पर है उतना इख्तियार फरिश्तों पर भी है, जो भी इस बारगाह में आएगा वो बख्शा जाएगा। आज भी बारगाह है, ये मजलिसे हुसैन में इतनी ताकत है कि ये मजलिसे हुसैन खुद होर पैदा करती है। यहाँ अगर कोई भी शर्मिंदा होकर आ जाए, खुदा ना खास्ता अगर दिन में कोई गुनाह हो गया, वो आ जाए इस बारगाह हुसैनी में, मजलिसे हुसैनी में, और इमाम हुसैन की तरफ रुख करके शर्मिंदगी और पशेमानी का एहसास करे। शर्त है तौबा के लिए शर्मिंदगी का एहसास, तो यकीन जानिए कि वो मौला करीम है, ऐसा करीम है कि वो अपने अज़ादार को माफ़ कर सकता है। जब हुर इमाम की खिदमत में आया था तो कैफियत क्या थी, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, सर झुका हुआ था और कह रहा था, मौला क्या मुझ जैसा भी माफ़ किया जा सकता है। इमाम ने कहा कि ए होर जा, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। अल्लाहु अकबर, कितनी अथॉरिटी है, कितनी ज़मानत है। अगर कोई इंसान हज के लिए ज़ियारत के लिए जाना चाहता है तो वो अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है और मिलने के बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़्यारतों पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, तो जिससे आप मिलने के लिए जाते हैं वो यही कहता है कि जाओ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मेरे खुदा ने भी माफ़ कर दिया, ये ज़मानत नहीं ले सकता, वो ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता कि जाओ खुदा ने भी माफ़ कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन पर हमारी जान कुर्बान कि कितनी ज़मानत ले रहे हैं, हुर से कह रहे हैं हुर जाओ मैंने भी तुम्हें माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। ये अजीम बारगाह है, वहबे कल्बी भी आया है, कितने दिन का मुसलमान है लेकिन ज़िंदगी इतनी तैयब ताहिर हो गई, 17 दिन का मोमिन, 17 दिन का मुसलमान, बारगाह हुसैनी में अपने आप को उसने मंसूब कर दिया और आज तक वो अलैहिस्सलाम करार पाया है। जो भी इस बारगाह से अपने आप को मंसूब कर ले तो उसका मर्तबा बढ़ जाता है। मादरे वहबे कल्बी ने कितना अपना हौसला दिखाया, नौशाह है, जवान बेटा है, कहा बेटा जाओ अपनी जान को कुर्बान करो, जान को उसने अपनी कुर्बान कर दी। सरे हुसैन जब एक सरे वहबे कल्बी को जब एक मर्तबा दुश्मन लेकर आए माँ के पास, तो माँ ने एक मर्तबा सरे वहब को लौटा दिया, कहा हम अहले बैत से जुड़ गए, हमारा ताल्लुक अहले बैत से हो गया है, जो हम अता कर देते हैं वो वापस नहीं लेते। ये अजीम बारगाह है, ऐसे ऐसी मुसीबतों का इन्होंने सामना किया है जिसका तसव्वुर करें तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। 1400 सदियां गुजर गई हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि इतने साल गुजर गए हैं आज भी आप रोते हैं, आज भी आप गिरिया करते हैं। खुदा की कसम यकीनन हम ना रोते, हम गिरिया ना करते, अगर करबला में बीबियों को रोने दिया गया होता। करबला में रोने वालों की कमी नहीं थी, हुसैन पर गिरिया करने वालों की कमी नहीं थी, ज़ैनब जैसी बहन हुसैन पर रोने के लिए मौजूद थी, सकीना जैसी बेटी मौजूद थी, लेकिन मुसीबत ये है कि जब ये बीबियाँ रोना चाहती थी तो कभी तमाचे मारे जाते थे और कभी पुश्त पर थुर्रे बरसाए जाते थे। अल्लाहु अकबर, मुसीबतों का सिलसिला सिर्फ शहादत तक नहीं रुका बल्कि आज़ादार हो शहादत हुसैनी के बाद इन्हीं बीबियों को कैद किया गया, असीर किया गया, सरों से चादरें छीनी गईं और चादरें छिन जाने के बाद

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: खुदा ने चाहा तो मैं मिंबर पे जाके आज खुतबा पढूंगा।
2: किस मुनासिबत से?
1: मैं अमीर इब्ने ज़ियाद की हुकूमत का नायब हूँ।
2: अमीर इब्ने ज़ियाद खुद रे की कौन सी जहन्नम में चले गए हैं कि आपको अपनी हुकूमत का नायब बना दिया है उन्होंने?
1: इस्तग़फ़ार करो अमीर, ना तो मैं उम्र साद हूँ और ना ही ये लोग जो खड़े हैं औरत हैं। आमिर इब्न मसूद, हंगामा मत करो, बैठ जाओ। ये दो अफराद जो तुम देख रहे हो कासिद खलीफा इब्ने ज़ियाद हैं। उनकी जानिब से कूफे के मोमिनीन के लिए पैगाम लाए हैं।
2: खुदा की पनाह, क्या आप लोगों ने सुना? इब्ने ज़ियाद अपने आप को खलीफा कहलवा चुका है और यकीनन उसका पैगाम भी यही होगा के कूफे वाले उसकी बैत कर लें। कुछ तो शर्म करो कूफे वालों, खुदा के घर का मिंबर क्या इस कदर लावारिस हो गया है कि हर ना अहल और कम हैसियत शख्स उस पर बैठ जाए? तुम्हारा मिंबर और मेहराब से क्या वास्ता?
1: ऐ बदतमीज अरब, अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा सर जिस्म पर भारी हो गया है?

0: गुजारिश है कि मुझे माफ रखें।
1: क्यों मुख्तार?
0: मैं एक जंगजू हूं, सियासतदान नहीं। जैसा कि आपने फरमाया कि कूफा को एक समझदार

0: जो सियासतदान अमीर की जरूरत है ताकि समझदारी और होशियारी से कूफियों पर कामयाब हो सके। मैं खुद जानता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं।
1: तुम इनकसारी दिखा रहे हो मुख्तार, इनकसारी से काम ले रहे हो। कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमसे बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत थी।
0: वो शर्त सिर्फ एक सवालिया निशान था आपको पहचानने के लिए। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी नजर में मुख्तार की क्या कदर और कीमत है, बस इतना ही। मेरी हुकूमत का तख्त घोड़े की जीन है और मेरी राय तलवार। मैं फौजी लिबास में बड़ा हुआ हूं और मेरी जबान एक जंगजू सिपाही की दो टोक और सख्त जबान है। हुकूमत करने के लिए एक नर्म, मीठी और रंग बरंगी जबान चाहिए। ये वो सबक है जो मैंने खुद आपसे सीखा है। तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं मक्का में आपके हुजूर में ही रहूं।
1: बहुत खूब मुख्तार। नहीं,
2: कौन है जो कूफे की हुकूमत के लिए मुनासिब होगा?
3: जाहिरन कूफे वालों ने इस खत में एक शख्स का इंतखाब किया। बेहतर है कि खलीफा उनकी राय को भी देख।
1: किसका इंतखाब किया है?
3: आमिर इब्ने मसूद का।
1: आमिर इब्ने मसूद, एक दीनदार और खैरख्वाह इंसान है। मगर सिर्फ दीनदार और खैरख्वाह है। क्या वो कूफे जैसे शहर से निमट सकता है? हाँ, मुझे बईद लगता है।
4: कुछ अरसे उसे मोहलत दे दीजिए कि वाली कूफा बन जाए। अगर वो लायक और समझदार निकला तो बहुत खूब, न हुआ तो एक जिम्मेदार इंसान को कूफे की हुकूमत के लिए चुन लीजिएगा। जनाबे खलीफा, कूफियों की राय पर एतमाद करना कूफा के लोगों को आले जुबैर का चाहने वाला बना देगा।
1: अच्छी राय है, अगरचे हमें लगता है कि मुख्तार कूफे की हुकूमत के लिए सबसे उगला है। हैफे को उसने मना कर दिया। हैफे। मुख्तार के फैसले के पीछे कोई फितना छुपा हुआ है।
5: कैसा फितना?
1: ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे यकीन है कि वो कुछ गलत इरादे रखता है।
5: क्या वाकई आप उसे कूफा की हुकूमत देना चाहते थे?
1: मैंने तो दे दी थी, मलून ने कबूल नहीं की।
5: ताजुब है, तो फिर हम क्यों पागल बन रहे हैं?
1: क्या मतलब है? क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया?
5: मुझे पता है।
1: तो बताओ, क्यों कबूल नहीं की?
5: पहले मुझे बताइए कि क्या इरादा था, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्यों कबूल नहीं की।
1: मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था।
5: इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया। और वाकई कैसे जान सकता हूँ मैं?
1: तो फिर किस काम के हो तुम?
5: अगर मुझसे इतनी बातें छुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं। आप फौरन हुक्म दे सकते हैं कि मुझे फारिग कर दिया जाए और मुसलमानों की बैतुल माल को मुझ जैसे शख्स पर हराम ना करें जो किसी भी काम का नहीं।
1: तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं?
5: क्योंकि रोज रोशन की तरह वाजे है, हुकूमत कूफा के लिए मुख्तार को चुनना हरगिज सोचा समझा और माकूल फैसला न था न है। आप तो जानते हैं कि अगर मुख्तार कूफा पहुंच गया तो नाउज़ुबिल्ला खुदा भी उसे नहीं रोक सकेगा। तो फिर आप उसे किस तरह कूफा भेज सकते हैं? सिवाय इसके कि आप उसे धोखा देने के लिए भेजना चाहते थे या फिर मक्का और कूफा की राह में उसका किस्सा तमाम करना चाहते थे।
1: जब बछड़ा हद से ज्यादा बड़ा हो जाए تو اس کی ماں کو شدید پریشانی ہو جاتی ہے. ابھی

0: बहुत वक्त लगेगा तुम्हें एक समझदार सियासतदान बनने में।
1: यहां तो सिर्फ मैं और आप हैं,
0: और इसके अलावा खुदा भी। वाकई तुम किसी काम के नहीं हो। बिन सहाल एक राज जब जबान पर जारी हो गया तो वो राज नहीं रहता, हर फ्याम हो जाता है, फैल जाता है, फैल जाता है। आज के बाद जो आ जाए जबान पर कोई राज, बंद रखना लबे बदसाज, रखो राज को राज, ध्यान रखना कि न हो जाए सोनसाज, वरना होगा कफस उम्र का तेरी दरबाज। मुर्गजां तेरी निकल कर करे उससे परवाज।
1: ये जो आपने फरमाया क्या ये शेर था?
0: नहीं, धमकी थी। मैंने रतीफ काफी के साथ दी है ताकि मर के भी ना भूल सको। अब बताओ कि मुख्तार ने कूफे की अमीरी क्यों कर कबूल नहीं की? मुख्तार को मेरे इरादे का पता नहीं था, लिहाजा बकवास मत करना।
1: हाँ, मुझे लगता है कि जब तक मुख्तार के रकीब की शक्ल में सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई है, मुख्तार कूफा नहीं जाएगा। वो तवाबीन का अंजाम देखना चाहता है, लिहाजा तामुल से काम ले रहा है। जब तक सुलेमान इब्ने सुर्द और उसके साथी कूफा में है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो इरादे मुख्तार के हैं उनकी राह में सुलेमान सबसे बड़ी रुकावट है।

0: क्या सोच रहे हो शेमर?
1: मैं हैरान हूं उमर, खुदा के कारनामों और जमाने की गर्दिश से हैरत अदा होकर रह गया हूँ। आमिर की हवा की मानिंद आई हुई हुकूमत कितनी अजीब है ना। एक शख्स तुम्हारी तरह सारी उम्र तलब हुकूमत में तड़पता रहता है और एक शख्स आमिर की तरह रात को सोता है, सुबह उठ के देखता है तो पता चलता है कि अमीर बन गया।
0: आमिर की अमीरी ज्यादा चलने वाली नहीं है, वो हवा के झोंके की तरह है।
1: तो फिर उसकी बैत क्यों करना चाहते हो?
0: तुम क्यों बैत कर रहे हो?
1: मैं आली उमैया की ठोकर खाया हुआ हूँ उमर, इन लोगों से मायूस और बेजार हूँ। मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बनी उमैया के पास कोई ऐसा लायक इंसान बचा हो जो माविया की हुकूमत को जिंदा कर सके।
0: मैं अपनी जान के खौफ से बैत कर रहा हूँ, तवाबैन के गुस्से से बचने के लिए मुझे मजबूरन आले जुबैर की पनाह लेनी होगी।
1: कूफे से बाहर क्यों नहीं जाते उमर?
0: चला जाऊं? कहां चला जाऊं?
1: वही जहां इब्ने ज़ियाद गया है शाम।
0: तुम भूल गए कि किस तरह झूठी जन्नतें दिखाकर हमें इस्तेमाल किया, यानी फिर से बेवकूफी करूं ताकि ये हरामज़ादा इब्ने ज़ियाद मेरे सर पे सवार हो जाए? हरगिज़ नहीं। अगर मुख्तार मक्का में ना होता तो मैं खाना काबा में पनाह ले लेता।
2: मैं हाकिम नहीं हूं, लोगों की खिदमत का अमानतदार हूं। आप लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया कि लोगों के साथ हम आवाज हो गए और बैत का इरादा कर लिया। लोग फिरका वारियत से थक गए हैं। मेरे ख्याल से तवाबैन भी गलती पर हैं। ये लोग कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुर्दा भी अजाब में और जिंदा भी अजाब में। बहरहाल मैं कूफे वालों के काबिल एतमाद और खिदमत गुजार होने के नाते यही नसीहत करता हूँ कि तमाम मुसलमान भाईचारगी अख्तियार करें। यही बात खलीफा के हुक्म में हमें मिलती है। खलीफा चाहते हैं कि मुसलमान आपस में रहम दिली और नरमी का गोशा रखें, पुराने जख्मों पर लड़ना बंद करें और तमाम बुग्ज और कीनों को भुला डालें।
1: क्या तवाबीन खलीफा की बैत नहीं करना चाहते?
2: क्या कहूं, मौजू को पेचीदा बना रखा है उन्होंने। जुमानी बातें करते हैं, वो चाहते हैं कि खुदा भी मिल जाए और वसले जाना भी। ना आले जुबैर का साथ देते हैं और ना ही मुखालफत करते हैं।
1: ये तो नहीं हो सकता अमीर, या इस तरफ हो जाएं या उस तरफ हो जाएं। जनाब खलीफा का क्या इरादा है?
2: आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूं कि खलीफा की बात एक दिलसोज बाप की सी है। उम्मीद है कि ये फर्जंदे खताकार गलत रास्ते से लौट आए और सीधे रास्ते पर चलने लगे और बाप के गम और गुस्से का बायस ना बने।
0: अगर ये नाफरमान बेटा सीधे रास्ते पे ना आए तो क्या?

0: मुझे वो रोटी खिला के मारना जो मुल्क के रहे की गंदम से पकी हो, ये चाहे उसके कुछ भूसी टुकड़े ही मुझे दे दो कि वो खा लूं।
1: ए मुख्तार, मुझे गौर से देखो, मैं वो शकी हूँ जिसने उस नेक सिपह सालार का खून अपने इन हाथों से बहाया जिसका कोई यावर न था।

0: ये खोल दो, मैं पानी की देख में फेंक दो।
1: अलविदा है खाना काबा, अलविदा है आंसुओं के क़िबलागाह, अलविदा है अली की जाए पैदाइश, शायद ये हमारा आखिरी दीदार हो।

कि जो लोगों को हिदायत की तरफ लेके जा रही है और इसी रास्ते को उसने कहा कि ख़राब किया जाए। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो आपको नहीं रोक सकता कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आएँ, आपको नहीं रोक सकता और ना रोक पाया वो, क्योंकि जब भी उन्होंने रोकने की कोशिश की इमाम हुसैन की मोहब्बत ने लोगों को और खींचा, चाहे लोगों को जाने देनी पड़ गई लोगों, मगर लोग पीछे नहीं हटे। तो वो क्या करता आखिर कि वो इस पैगाम को रोके। और ये काम आज का नहीं है, जाने मोहतरम मैं पहले भी मजालिस हो रही उसमें कहा कि परवरदगार ने जब हिदायत का रास्ता मुअय्यन कर दिया, अपने हादियों को भेज दिया और अपनी तरफ बुलाने का ये रास्ता अपने नबियों के ज़रिए, अपने औसिया औलिया के ज़रिए से, तो वहीं पर शैतान ने भी अपना रास्ता स्टार्ट कर दिया। अब ये इत्तफाक़ नहीं है कि मतलब अगर एक कोई अच्छी बात कर रहा है तो दूसरा आपको उससे रोकेगा, नहीं, ये बाकायदा सिलसिला है कि जिसमें परवरदिगार ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब खल्क किया और कहा कि शैतान को कि सजदा करो, जब उसने सजदा नहीं किया फिर उसे निकाल दिया गया, फिर उसने मोहलत मांगी कि मुझे मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को भटकाऊँगा, उनको वरगलाऊँगा, तो परवरदिगार ने उसे एक वक्त मालूम तक मोहलत दे दी। अब वो जो मोहलत दी है वो अपना काम करेगा। और हर नबी की दौर के अंदर कि जहाँ नबी आए बुतों की पूजा से दूर करने एक अल्लाह की इबादत के लिए, वहाँ पर शैतान ने अपने नुमाइंदों को भेजा जो नबी के रास्ते पर रुकावट डालते। तो ये कैसे हो सकता था कि आखिरी नबी जब आ रहा है, आखिरी नबी के जो दीन को कामिल कर रहा है और दीन को कामिल किया आकर, वहाँ पर दुश्मन, वो जो शैतान सबसे बड़ा दुश्मन कुरान कह रहा है कि तुम्हारा खुला और शदीद तरीन दुश्मन जो है वो कौन है? शैतान है। वो अपना काम करेगा आकर और वो इसी रास्ते से आकर रोकेगा। लेकिन इस सिलसिला हिदायत को जो कि कुफ्र और मोमिन की जंग हर दौर में चलती रही, एक नबी आया फिर वो गए, फिर शैतान आगे बढ़ा, फिर नबी आया, फिर काटा उसको, फिर आगे बढ़ता गया सिलसिला, यहाँ तक कि जब रसूल खुदा आ गए तो फिर शैतान ने एक चीख मारी है कि उसकी, यानी कि अब वो आ गया कि जो रहमतुल आलमीन है। लेकिन जब उसने कहा कि क्या मैं इस नबी तक अपना रसूख कर पाऊँगा, तो हज़रत जिब्राइल ने मना कर दिया कि यहाँ नहीं। तो कहा क्या मैं इसकी उम्मत में? कहा हाँ, तुम इसकी उम्मत के लोगों तक जा सकते हो। तो वहाँ शैतान ने कहा बस मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन अगर आज हम उम्मत को देखें तो उसे लगता है जैसे शैतान तो है ही नहीं, क्योंकि उम्मत तो है वो खुद शैतान के रास्ते पर, ना कह रहा खुदा ना खास्ता मैं आपको कह रहा हूँ, यानी कि हम खुद, मैं अपने अमल कह रहा हूँ कि मैं बाज़ औक़ात अपने अमल में इतना मगन हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि शैतान भी है दुनिया में कि नहीं है, मेरा नफ्स भी है कि नहीं है, मेरी ख्वाहिशात भी हैं कि नहीं है। मैंने तो, क्योंकि देखिए ना, मैं तो वो हूँ कि मैंने अपने लिए हर चीज़ की रीजनिंग पैदा कर ली है कि अगर मैं कोई काम करना चाहता हूं तो मेरे पास उसकी रीजनिंग है, मेरे पास उसके पास लॉजिकल रीजन है। मौलाना साहब आपको क्या पता, बड़े हालात ऐसे हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये इसको यूं करना पड़ता है, इसको यूं करना पड़ता है, किसी तरीके से इस काम को भी, स्टॉक को कहीं ऊपर नीचे काम को भी कहते हैं मौलाना साहब से इजाज़त लेने की तरीके से। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि दुनिया मेरे लिए तो ज़िंदगी में यही दुनिया है, और जब मैं इसको अपनी ज़िंदगी समझ लूँगा तो भाई शैतान को यही तो मौका चाहिए उसको कि ये किसी तरीके से अपने आप को गफलत में डाले और इस भूल में बैठे कि यही ज़िंदगी उसके लिए सब कुछ है। और आज आप देखें उम्मत मुस्लिमा को जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो क्या है कि उम्मत मुस्लिमा दो चार है कि वो ये भूल रही है कि कोई एक उसका दुश्मन बाहर से अंदर आया हुआ है, और वो आपस के अंदर आप देखें तफरका देखें, लड़ाइयाँ देखें, इत्तेहाद की फ़ज़ा बिल्कुल ख़राब हो गई है। क्यों है? और वो मेंबर जो कि रसूल खुदा का मेंबर है, वो मेंबर के जिसके लिए रसूल खुदा के इंदल हुसैन मिज़बाल हुदा व सफीनतुन निजात, के बेशक इमाम हुसैन जो हैं वो मिज़बाल हुदा हैं, हिदायत का चराग हैं, निजात की किश्ती हैं, वो मेंबर आज न के सारे मेंबर लेकिन कुछ तादाद उसमें से कि आज आप देखें क्या कर रही है, क्या उस मकसद की तरफ बुला रही है जो इमाम हुसैन का मकसद था, क्या उस कामयाबी की तरफ, उस कयाम की तरफ कि जिसके लिए हज़रत सईदा सलाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो है वो अपनी जद्दोजहद की या नहीं। और अगर इन सब सुनने के बाद

गया, लेकिन कभी अपने आप को भी तो दें इन हस्तियों को, कभी ये भी तो कहें कि मौला आपने तो बहुत कुछ दिया है, मैं आज आपको अपने आप को आपके हवाले करने आया हूँ, मुझे दें कुछ, मेरे लिए मारिफत के दरवाजे खोले। ऐसे थोड़ी सलमान बूजर कम्बर बन गए, नाम सबके सुनने हमने, हजरत मीसम तम्मार के भी नाम सुनने, मगर ये नहीं देखा कि हजरत मीसम तम्मार बने कैसे, वो शख्सियतें कैसे बन गई जब वो अहले बैत के नाम पर सुनती थी। मारिफत तब आएगी कि जब हम अपने वजूद से, अपने अमल और किरदार से आगे बढ़ना शुरू कर दें। अय्याम माह मुहर्रम एक बहुत बड़ी दर्जगाह है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर किरदार इसके अंदर, इसमें डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। जवानों का डिपार्टमेंट अलग है, बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है, ख़वातीन का डिपार्टमेंट अलग है, बूढ़ों का डिपार्टमेंट अलग है, यानी एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी है कि कोई भी शख्स यहाँ से आए तो खाली हाथ नहीं जाएगा। बच्चे आए वो हज़रत कासिम की सीरत पर चलते हुए जाएंगे, जवान आए हज़रत अली अकबर की सीरत पर जाएंगे, बूढ़े आए हबीब अपने मज़ाहिर की सीरत पर जाएंगे, ख़वातीन आए तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से लेकर और बाकी तरफ जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हम इन अय्याम में मुतवज्जा हों, हम देखें कि हम अभी तक कितना इनको समझ पाए, थोड़ा सा ज़हमत करें, थोड़ा सा चंद दिन की बात है, बहरहाल जो है वो हम थोड़ा सा ख़ुद अपने वजूद के अंदर देखें कि मेरे अंदर तो कोई रुकावट नहीं है। अज़ीज़ान, तुम करबला को बयान करने का मकसद यही है बार बार कि करबला को बयान किया जाए ताकि वक्त के इमाम तक पहुँचा जाए। अगर आप उसको बयान क्यों करते हैं, वो वाक़यात आपने सुने हुए हैं, सारे आपने वाक़यात सुने हुए हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर उल्मा को आपने सुना हुआ है, आपके दरमियान में उल्मा मौजूद भी हैं, मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्यों तकरार किया जाता है, ताकि हम, क्योंकि हमारे इंसान के वजूद में बहरहाल अल्लाह ने चीज़ रखी है निस्यान, इंसान भूल जाता है, इंसान को तज़क्कुर की ज़रूरत है, और ये तज़क्कुर उसको रियलाइज़ कराता है कि उसे करना क्या था। तो बहरहाल जो सिलसिला परवरदिगार ने अंबिया का शुरू किया, वहीं पर जो है वो शैतान भी अपने सिलसिले को साथ लेकर आया। ये कुफ्र और बातिल हर दौर में इसने पूरी कोशिश की कि हिदायत के रास्ते पर रुकावटें डाले। इसका काम गुमराहों से नहीं था, इसका काम काफिरों से नहीं था, काफिर काफिर था, बातिल बातिल था, उसको वहाँ नहीं रोकना था। जैसे किसको रोकना था, उनको रोकना था कि जो हक के रास्ते पर थे, जो हक की पहचान की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ इसने रुका, और हर दौर में यही किया गया। हज़रत इब्राहिम को तंग किया, हज़रत इब्राहिम के लिए नमरूद ने आग लगा दी, आग में झोंक दो, हज़रत मूसा को जो है वो फिरौन ने पैदा होने से पहले कि ऐसा कोई शख्स पैदा ही ना हो जो फिरौन को ख़त्म करे, यानी आप देख रहे हैं कि ये फिरौन को किसने बताया, यानी फिरौन इतना बड़ा था कि उसके जादूगर इतनी इन्फॉर्मेशन रखते थे कि इलाही निज़ाम को देख रहे थे, कौन बता रहा था उनको, ये कभी हमने सोचा कि उन जादूगरों को ये कौन बता रहा था कि एक आने वाला है, कौन बताता है, वो जाहिर है वो जो शैतान उधर से निकला हुआ है उसी के पास इन्फॉर्मेशन है सारी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन आने वाला भी आया और फिरौन के घर ही में पल पड़कर बड़ा हुआ। ये है हिदायत इलाही का कमाल कि जब खुदा किसी चीज़ का इरादा कर ले तो फिर दुनिया जितनी कोशिश कर ले उसे हिला नहीं सकती। विलायत अली इब्ने अबी तालिब भी खुदा का इरादा है, इसे जितनी भी दुनिया ने कोशिश की इसे हिला नहीं सकी। यही वजह है कि जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल खुदा ने आखिरी नबी जब पैगाम लेकर आए तो वहाँ पर ज़ाहिर है शैतान अपनी पूरी ताकत से लगा किस नबी के रास्ते को इस तरीके से रोकने की कोशिश की, कामयाब हुआ अपने ज़ाहिरी, आप अगर ज़ाहिरी स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो कामयाब हुआ। ज़ाहिरी स्टैटिस्टिक्स क्या थी कि अभी नबी गए हैं तो कितने थे वसी के साथ, कितने थे?

लोग, चार बाज रहा है तुम्हें, छह लोग, यानी आप सोचें कि अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को भेजा और आखिरी नबी के लिए सारे आए, और सब करने के बाद लाखों का मजमा गदीर खुम में लगा हुआ जो है वो विलायत का इकरार भी कर रहा है, मगर रसूल जैसे ही गए कहाँ गए, सारे कहाँ गए, मुनाफिक कहाँ गए, जो सूरह मुनाफिकून उतर रही है, मुनाफिक कहाँ है तारीख में, मुनाफिक नज़र नहीं आता, फिर बाद में लोग कहाँ गए और क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अभी हम लोग तो दूर से बैठे हैं ना, हमारे लिए दूर से किसी चीज़ को तज्जिया करना बड़ा आसान है, दूर से उंगली उठाना बहुत आसान है, नीचे से ऊपर वाले के लिए उंगली उठाना बहुत आसान है। और वे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे थे, इन्हीं ऐसे ऐसे में अगर हम होते तो कहाँ होते, हम होते तो कहाँ होते, वो ऐसे ऐसे कौन थे जो छोड़ गए विलायत को, क्या चीज़ थी जो विलायत को कबूल करने के रास्ते में रुकावट थी, क्या चीज़ थी, मगर जानते नहीं थे, मगर देखा हुआ नहीं था, मगर शुरू से इस्लाम की दावत ज़ुल-अशीरा से लेकर गदीर खुम तक मगर अली के सिवा किसी और नाम को सुना था उन्होंने, फिर वजह क्या थी, क्या चीज़ थी जो उस विलायत को कबूल करने के दरमियान आ गई, और क्या चीज़ है कि जो इतना इमाम का नाम सुनने के बावजूद इमाम के ज़हूर में रुकावट बन रही है, क्या है, कौन सी चीज़ है वो, कोई और नहीं है वो, मैं खुद हूँ, मेरा वजूद है, मेरी ज़िंदगी और मेरी दुनिया है, वो दुनिया जिसे मैंने खूबसूरत बनाया हुआ है, वो दुनिया जिसे शैतान ने मुझे पेश किया है कि ये है तुम्हारी ज़िंदगी, ऐसे गुजारो ज़िंदगी, उसने दुनिया को खूबसूरत बनाया हुआ है, वो अपनी दुनिया ही से तो खींच रहा है, और उसने खींचा, चाहे वो खौफ था, कुछ को खौफ था किसका, वो मार दिए जाएंगे, कुछ छिन जाएगा, कुछ को क्या था, लालच थी, किसकी, मनसब की, जगह की, डेजिग्नेशन की, स्टेटस की, मनसब की ख्वाहिशात थी लोगों को, लालच थी, कुछ धोखेबाज थे, कुछ के शिकमों में हराम लुकमे थे, यही वो वजूहात बनी कि जिसका मरकज दुनिया है, मरकज दुनिया जाने वो उतना था, विलायत के मुकाबले में, अंबिया के मुकाबले में जो चीज सबसे पहले आई है वो दुनिया है, दुनिया परस्ती है, जिस शख्स ने कहा कि बुद्ध की पूजा करो, असल बुद्ध की पूजा नहीं थी, अपने कामों की तरफ लगाना चाहता था, अना रब्बुकल आला, मैं हूं तुम्हारा रब, दुनिया थी। सामरी ने जिस गौशाले में वो मट्टी डालकर उसे बोलना सिखा दिया कि मैं हूं, ये है मूसा का रब, यानी दुनिया थी जो खींच रही थी। अब आज हमारे आइम्मा को किसने अकेला छोड़ा, दुनिया, लोग तो थे, लोग जानते थे, मगर लोग करबला में नहीं जानते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन है, ये रसूल के नवासे हैं, मगर वो बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्होंने नाम लेटर लिखे थे कूफा में, मगर वो नहीं जानते थे इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन कौन है, आप क्या समझते हैं ये सारे लोग को बाहर से आए थे, ये कोई और मखलूकात थी जो इमाम हुसैन को नहीं जानती थी, नहीं, सब जानते थे कौन है ये, फिर क्यों नहीं आए, इसको तहलील करें जाना, मतलब देखें अपनी जिंदगी में मेरी कौन सी चीज है जो मेरे मामले में रुकावट बनी हुई है, कौन सा गम है जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक खा रहा है, आज क्या गम है आज मेरी जिंदगी में, काम नहीं है, कारोबार खराब है, जिंदगी ये हो गई है, जिंदगी वो हो गई, मुझे और आप में से, मैं आपको नहीं खुदा ना खास्ता, मैं अपने आप को कह रहा हूं, मुझे कितना आज 24 घंटे में जो मैं रो रहा होता हूं, आज बहुत सारी चीजों पे, 24 घंटे में मैं कितना इमाम जमाना पे रो रहा हूं, मैं कितना ये कह रहा हूं कि मौला नहीं आ रहे हैं, इमाम नहीं आ रहे हैं, यह है मेरी जिंदगी के अंदर, और मैं करबला सुन रहा हूं पिछले कई सालों से कि भाई लोगों ने छोड़ दिया इमाम को, हल में नासिर है कोई इमाम की मदद करने वाला, इमाम ने कहा और कोई भी नहीं था, और ये सुन रहा हूं मैं, बचपन सुन रहा हूं मैं, मगर आज इमाम का जोर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं सुन के चला जाता हूं, मैं हिल नहीं रहा,

पूरे बातिल की ताकतों को कि जो शैतान हजरत आदम से लेकर खातम तक अपनी पूरी ताकत जमा कर कर जो लेकर आया है वो यजीद के सूरत में, करबला ने उस पूरे मारके को, उस पूरे ब्लॉक को काटा है, काटा है, लाइन खींच दी हक और बातिल की कयामत तक के लिए। बशरियत की बका हुसैनियत के अंदर है, बशरियत की बका, अगर इमाम हुसैन नहीं होते ही नहीं होता, बशरियत नहीं रहनी थी, इंसान की कदरें खत्म हो जाती हैं अगर इमाम हुसैन नहीं होते। एक आलिम दीन, क्योंकि शागिर्द कहते हैं कि नमाज पर बहुत ज्यादा वो थे, शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, मगरब का वक्त हुआ तो कहा कि बस वाले को कहो बस रोके, नमाज पढ़नी है। तो कहा किबला कहाँ रोकेगा ये बस वाला ऐसी है। कहा बोलो तो सही, गया उसको बोला भाई रोक दो। कहा नहीं मुझे जल्दी जल्दी रात हो रही है, अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँ ताकि शहर पहुँचूँ। तो कहा क्या हुआ? कहा हमने तो पैगाम दिया नहीं रोकी। कहा चलो हमने कहा कि चलो इसको पैगाम देते हैं, अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, चलो हम बस को खुद ही रोक देते हैं। तो उन्होंने खुद ही कहा कि बस रुक जाओ, बस रुक गई, बस रुक गई। वो लगा रहा बस स्टार्ट, ये उठे वजू किया, नमाज पढ़ी, मगरिब इशा की, अब ये बस में लगा हुआ है। तो कहा बस को कुछ नहीं हुआ, आ जाओ बस स्टार्ट करो। इसने स्टार्ट की तो बस स्टार्ट हो गई। ये आके पाँव पड़ गया, माजरत के मुझे माफ़ कर दें। ये जो आयतुल्ला नमाज पढ़ते थे तो नमाज से पहले करबला की तरफ मुंह कर कर कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तो लोगों ने बोला किबला को नया फतवा आ गया। कहा नहीं, कहा मेरी नमाजें मेरे रोज़े सब हुसैन की वजह से ज़िंदा है। मारिफत है, यानी दर्क है कि सब कुछ इमाम हुसैन की वजह से ज़िंदा है। इमाम हुसैन ने कोई जंग इक्तदार के लिए नहीं की थी कि हम बोले इमाम हुसैन को जो है वो गवर्नमेंट चाहिए थी, इमाम हुसैन को जो है वो इमाम हुसैन को नहीं, इमाम हुसैन ने इकदार वैल्यूज़ को उजागर किया जो आज तक उजागर है। उस वक्त लोगों ने पानी बंद कर दिया, बंद कर दिया, मगर आज लोग इमाम हुसैन के नाम पर पानी और सबील लगाकर दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हुसैन के ऊपर तुमने चंद दिन पानी बंद किया, हुसैन आज पूरी दुनिया को पानी पिला रहे हैं। दर्क है, मारिफत है, हर चीज़ को आप अगर मारिफत से करेंगे तो वो अपना चेहरा बदल देगी, वही काम आप वैसे करेंगे चेहरा बदल जाता है, नीयत बदल जाती है। ये अजदान मोहतरम, यानी ये बहुत बड़ा काम, ये छोटा नहीं था, ये बशरियत की बका के लिए। तभी एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन पादरी कहता है कि अगर हमारे पास हुसैन होते तो मैं इमाम हुसैन के परचम को लेकर पूरी दुनिया को क्रिश्चियन कर चुका होता, अगर हमारे पास हुसैन होते। हमने क्या किया, हमने जो आ रहे थे उनको भी बाहर भेज दिया। ये किया ना हमने, तो हमने तो इमाम हुसैन की तो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मुहर्रम शुरू होता है और दुश्मन पूरी प्लानिंग करके बैठा होता है मुहर्रम से पहले प्रोपोगंडा, और हम सब उस पर पड़ने का शिकार हो जाते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग होती है। हमें महसूस ही नहीं हो रहा जाने मोहतरम कि शैतान है, हमें नहीं पता। जब तक इंसान दुश्मन शनास ना हो वो खड़ा नहीं रह सकता। हमें पता ही नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं अपना, वो ये दुश्मन है, वो इसका दुश्मन है, वो इसका दुश्मन, वो नमाजी है, वो मातमी है, तो हमें लगाया क्या इस चक्कर में, हमारा पूरा मुहर्रम इसी में गुजरता है। एक ने पढ़ दिया, दूसरा उनके जवाब दे रहा है, तीसरा उनका जवाब दे रहा है, मतलब हम कर क्या रहे हैं। इसलिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, इसलिए हमारी सादात जो है वो हाथों में रस्सियाँ पहनकर बाजार घूमती रही, हम ये करते रहे मुहर्रम सफर के अंदर। ये दुश्मन की साजिश है और हम समझ ही नहीं रहे हैं उसको। नहीं नहीं मौलाना साहब, क्या नहीं नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश करें। दुश्मन इंतजार करता है पूरा साल कि ये कब जमा होंगे सारे मिल के, इनको तोड़ो, बैठाओ मेंबर पे जैसे लोगों को बैठा सकते हो। और जरूरी नहीं है कि मेंबर पे बैठने वाला पीछे से कहीं से कुछ ले खा रहा हो, अदना खुद नफ्स इंसान का अगर तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो कौन सा को, जब वो खुद को नहीं हिदायत देगा तो दूसरों को कहां से लेके जाएगा वो। लेकिन हमारे लिए जाने मतलब मसला इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने बच्चे को जब ट्यूशन पढ़ाते हैं या किसी

स्कूल में भेजते हैं तो छह लोगों से पूछते हैं स्कूल कौन सा अच्छा है। कोई नया भी यहाँ पे आए टाउन में आए तो भाई कौन से स्कूल में बच्चे को पढ़ाए, आपसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, छह लोगों से पूछेंगे। फिर बोलेंगे अच्छा कोचिंग सेंटर कौन सा है, लैंग्वेज सेंटर कौन सा है, ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। दस सवाल करने के बाद फिर बच्चे को दाखिल कराएंगे। लेकिन मौलाना कौन आ रहा है, कौन पढ़ के जा रहा है, किसको बुलाना है, हमें क्या ठीक है।

0: सवाल करने के बाद फिर बच्चे को दाखिल कराएंगे। लेकिन मौलाना कौन आ रहा है, कौन पढ़ के जा रहा है, किसको बुलाना है,
1: हमें क्या, ठीक है आगे।
0: दीन की अहमियत ही नहीं है। एक कोचिंग सेंटर, एक क्लास, एक ट्यूशन के लिए इतनी टेंशन है औलाद की, और वो मेंबर जो कि जन्नत की तरफ लेके जाएगा, वो मेंबर जो वक्त इमाम से बुलाएगा, उसे टेंशन ही नहीं है। असल दीन की क्या क्या है? दीन बस मौसम मौलाना मॉडर्न हो गया है। क्या दीन, बहुत अब बैकवर्ड बातें, थोड़ा सा इंसान को आगे जाना चाहिए, थोड़ा सा दीन से बाहर की बात करें, बस एथिज्म की बातें करें, बस ठीक है, खुदा होगा कोई, यही है। जब आप सही मैसेज नहीं देंगे, जवान यहीं जाएंगे, और कहाँ जाएंगे आज जवान, कहाँ जा रहा है आज, माशरा किधर जा रहा है? अजाने मोहतरम, इंसान अपनी खलवत से पहचाना जाता है, जलवत से नहीं पहचाना जाता। मैं आपके सामने कैसा हूं ये कोई कमाल नहीं है, जैसा मैं अपनी तन्हाई में हूं वो मेरी पर्सनैलिटी है। मैं और आप अपनी तन्हाई में कैसे हैं, अपने मामलात में कैसे हैं, हम लोग अपने घरों में कैसे हैं, अपने लेन देन में कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सही है या नहीं? यहां पे तो बड़े अच्छे हैं, नीचे जाके भाई इसके इसने पैसे देने, उसने उसके पैसे देने, ये इसको जो है वो लगा जाओ, उसको लगा दो। सैयद मेहदी तबातबाई बयान करते हैं कि एक शख्स जो है नजफ में था, खूब साहिब हैसियत था, किसी को पैसे दिए, पैसे उसने वापस नहीं किए, जैसे हमारे यहाँ भी आजकल होता है, पैसे जब तक पैसा आपके पास है आपका है, जहाँ आपने दे दिया फिर आपका नहीं है, और आपने अगर किसी को दे दिया तो बस फिर खुदाई हाफिज़ है, आजकल के दौर में तो वैसे ही। तो उसने भी मदद की किसी की, अब उसका पैसे वापस नहीं कर रहा, तो बहुत परेशान। तो उसने कहा कि फलाने उस्ताद के पास जाए, उस्ताद अखलाक है, शायद आपको कोई राय हाल दे दे। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हाँ वो शख्स मेरे दर्स में भी आता है, तो तुम फलाने दिन आ जाना, दर्स है उसी दिन, मैं कुछ करता हूँ। तो खैर ये दर्स में गया, दर्स में वो भी सब बैठे होते, अभी इन्होंने दर्स देना शुरू किया, कहा कि मैं, मेरी पहले दुकान थी, वो आलम कहने लगे मेरी पहले एक दुकान थी, और एक यहूदी ने मेरे से कुछ लिया मामला, कुछ मेरे पास धर्म नहीं दे पाया, कुछ पैसे नहीं थे उस वक्त, तो मैंने उसको कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आखिर मैंने कहा अभी नहीं है, बाद में ना, कह नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल वो मामला, वक्त निकल गया, मैं भी भूल गया, और उस यहूदी का इंतकाल हो गया। कहता मैं एक दिन सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि रोज़े कयामत है और मुझे मलाइका सिरात के रास्ते से जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे ही मैं उस सिरात के रास्ते पर गया तो एक तरफ दोजक की आग है, अचानक से उस आग में से वो यहूदी बाहर आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मेरे वो धर्म वापस करो। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि सिरात में मैं कहाँ से तुम्हें धर्म वापस करूँ, यहाँ कहाँ से लाऊँ धर्म? कहा नहीं, कहता नहीं तो आगे नहीं जाने दूंगा मैं। अब मैंने मलाइका को कहा कि भाई इसको हटाएं, कहा कि नहीं, दुनिया का मामला था, दुनिया में तय करके आते हैं, हम नहीं, जब तक ये खुद नहीं हटेगा हम यहीं खड़े रहेंगे। अब वो फंस गया, उसने बहुत दिल तमाश की उसको कि मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तो आखिर में उसने कहा एक शर्त है, उसने बोला भाई अब जो भी शर्त कह रहा है तो यहाँ पर और क्या करें। कहा ये जो मेरी आग में भिगोई हुई उंगली है ये मैं तुम्हारे सीने में लगाना चाहता हूँ। उसने बोला कोई चारा नहीं था, तो कहा उसने उस उंगली को जैसे ही मेरे सीने में लगाया वो आग की तरह मेरे सीने में सुराख हो गया और अचानक से मेरी आँख खुल गई। और फिर उस्ताद ने दर्स में अपने पीरान के बटन खोल कर दिखाया तो सीना जला हुआ था, चंद धर्म लेन देन, लेन देन मुहिम है, बात मुहिम है, जबान मुहिम है, जबान से निकला हुआ जुमला निकल गया आपका नहीं है, आप उसके कैद में हैं। वाह, आपने कहा, आपने तो मजाक से कह दिया उसको, आपने तो मजाक से किसी को टॉन्ट किया, किसी का तीन लोग बैठे हुए, चार लोग बैठे हुए हैं आपने, लेकिन वो जो निकला है और अगर उसको तकलीफ हुई तो बस ये जुमला पलटेगा बरज़ख में। याद रखें खुदा का हिसाब किताब बहुत दकीक है। बहुत जूम है कैमरा, अंदर तक उतरता है जो सब, जब वो एक नेकी की सोच पे जो है वो

और कुछ थोड़ी सी देर के लिए मैं मुतवज्जा हूँ। शबे जुम्मा है, तमाम अरवाह करबला है। शबे जुम्मा तमाम रूहें, अंबिया, औलिया, आइम्मा, शहदा, सब करबला में। पहली सफ़र के बाद तारीखों के मुताबिक ये लुटा हुआ कारवां शाम पहुंचा है। अजीब है ये, मैं तो कभी भी नहीं गया, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मेरे साथ अहले हरम हों, मेरे घर वाले हों और लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखें, और वो भी अहले हरम के जिनके घरों में मलाइका आते जाते हों, और अकेले हों तो चलो समझ में भी आता था, खुद तो भात रस्सियों में बंधे हुए हैं, गर्दनों में जंजीरें हैं, प्यास की शिद्दत है, पानी जब बच्चे मांगते थे तो रास्ते में पानी नहीं दिया जाता था, पानी फेंक दिया जाता था सामने। उससे बड़ा जुल्म ये था कि इस लुटे हुए कारवान के साथ नेजे हैं और नेजों पे सर हैं, और ये जालिम ऐसे थे कि उन नेज़ों को इन सवारों के करीब कर देते थे कि जो थोड़ा सा दर्द ख़त्म होता था ना, वो दोबारा उजागर हो जाता था। वो एक बच्ची जब थोड़ा सा, शायद तो हो नहीं सकता कि, लेकिन शायद थोड़ा आराम पाती हो तो उसके बाप के सर को दोबारा उसके करीब कर दिया जाता था। न जाने वो बच्ची किस तरह अपने वालिद के सर से गुफ्तगू करती, कभी कहती होगी बाबा, और वो सर नेजे पर कुरान की तिलावत कर रहा है, और कभी उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि क्या कहे क्या करे। और एक सर है जिसकी निगाहें झुकी हुई हैं, उसकी इस निगाह से पता चलता है कि वो सर अब्बास का है। हाँ, आज़ादारण मोहतरम, जब अरबाब मकातिल बयान करते हैं कि जब हज़रत अब्बास शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमों में आकर यही कहा कि अब असीर होने की तैयारी कर लो। हाँ, आज़ादारण मोहतरम, शब जुम्मा है, शब तवस्सुल है, आए तवस्सुल करें, चलते हैं बारगाह बाबुल हवाइज में, कि जो बाबुल हवाइज है वो बाप जो हवाइज का दरवाज़ा है, कि जो इस दर पे आया है उसकी हाजतें पूरी हुई हैं। बच्ची भी आई रोज़े आशूरा, बच्ची आकर क्या कहती है, चचा पानी नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे प्यासे हैं, बच्चे शिद्दत से तड़प रहे हैं। कहा बाबा से इजाज़त ले दो बस। हाँ, आज़ादारण मोहतरम इजाज़त लेने गई, शायद यही कहा होगा मेरे मौला ने, बेटा तुम्हें शायद अपने भाई के प्यास की जो है वो शिद्दत है, मगर मेरा भाई गया तो वापस नहीं आएगा। आज़ादारण मोहतरम, गाजी अब्बास को इजाज़त मिली, मेरा मौला गया, दुश्मनों को जहन्नम वासिल करता हुआ पानी तक पहुंचा, पानी को हाथ में उठाया और पानी को पानी पर फेंक दिया। अब्बास की वफा ने अब्बास को इजाज़त नहीं दी कि जिसका अरबाब प्यासा हो उसके ग़ुलाम पानी नहीं पिया करते। हाँ, आज़ादारण मोहतरम, मगर हाथ में पानी आ गया था, आँख ने पानी देख लिया था, और करबला है ही इश्क का तवाफ। हज़रत अब्बास उस काबे का, जो इश्क का काबा है वो हुसैन है, उसका तवाफ कर रहे हैं। अब आपको पता है ना, जब एहराम बांध लिए जाएं और अगर कोई गलती हो जाए तो कफ़ारा देना पड़ता है, यहाँ इश्क का तवाफ था, यहाँ पानी ममनू था, मगर अब्बास ने हाथ में पानी उठाया तो अब्बास को हाथ देने पड़ गए।

हाँ आज़ादारन मोहतरम, एक हाथ गया फिर दूसरा हाथ गया, हाँ क्योंकि पानी को देखा था तो तीर आया जो आंखों में भी पैवस्त हुआ। आज़ादारन मोहतरम, उलमा बयान करते हैं कि इमाम तक ख्वाब में आए बाज़ उलमा के कि तुम मसाहिब तो पढ़ते हो अब्बास के, मगर तुम अब्बास के मसाहिब सही नहीं पढ़ते। कहा मौला मैं गाजी अब्बास के मसाहिब पढ़ता तो हूँ। कहा नहीं तुम सही नहीं पढ़ते। कहा क्या पढ़ूँ? कहा तुम ये नहीं पढ़ते कि जिसके हाथ ना हो वो ऊपर से नीचे कैसे आएगा? अजर को बोला आज़ादारन मोहतरम, जब भी कोई बुलंदी से नीचे गिरता है वो अपने हाथों से अपने बदन को सहारे। अरे मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला, अरे हाथ ही नहीं है, चेहरे भी जख्मी है, सर पे गुज लगे, आंखों में भी खून है, न जाने किस तरह ये लाल आया होगा नीचे और किस तरह अपने भाई को पुकारा होगा। हाँ यही तो वो मकाम था कि जब मेरे मौला को पता चला तो क्या कहा, इनका सारा जहरी, अरे मेरी कमर टूट गई। हाँ बास के जाने के बाद किस तरह मौला हुसैन पहुंचे हैं और फिर अपने भाई के सर को अपने जानू में रखा, कितनी गुफ्तगू हुई, क्या क्या हुआ, कुछ वसीयत हुई? हाँ चंद बातें गाजी अब्बास ने जरूर अपने भाई से कही। एक तो ये कहा होगा कि मेरे बदन को खैमों में मत लेके जाइएगा। उलमा बयान करते हैं कि शायद दो एतमाद हो, एक ये कि अब्बास बावफा थे, बगैर पानी के खैमों में नहीं जाना चाहते थे। कहा नहीं, दूसरा एतमाद ज्यादा मजबूत है। कहा क्यों? क्योंकि अब्बास जानते थे कि इमाम हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक चुके होंगे, अब मेरे मौला में शायद ताकत ना हो कि मेरे बदन को उठाए और खैमों में ले जाए, और इसलिए ये दो बदन वहीं रहे, किसी ने नहीं उठाया। एक अब्बास का बदन है और एक हुसैन का बदन है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयालम अल्लज़ीन ज़लमु अय्यामन कलबिन यनकलबून। परदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। परदिगार जो भी हाज़रीन मजलिस हैं महफिल में हैं, परदिगार जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनकी सारी शरीहाजात को हज़रत अब्बास के सदक़े में जल्द से जल्द कबूल व मकबूल फरमा। परदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें हज़रत अली असगर सदक़े में औलाद साले और नेक अता फरमा। परदिगार जो बेरोज़गार हैं उनके रिस्क को अपने गैब के ख़जानों से उनके रिस्क के फरावान अता फरमा। जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिस्क में तरक्की और कुशादगी अता फरमा। परदिगार बहुत सारे लोग मरीज़ हैं, बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं यकीनन जो आप बैठे हैं, आपके भी कुछ होंगे, मेरे भी जानने वाले हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बीमार करबला इमाम सज्जाद के सदक़े में शफाए कामल और आजिल अता फरमा। परदिगार जो कहतो बंद की असारतें झेल रहे हैं बहुत सारे ममालिक में हैं, उन्होंने कहा भी है, परवरदिगार असीरान कूफा और शाम के सदक़े में जल्द से जल्द उन्हें रिहाई अता फरमा। और बहरहाल यह आपकी कम्युनिटी में जो देव जी जिनको आज नहीं पता बहरहाल हादसा क्या हो गया है, कि परवरदिगार उन्हें भी जिस मुश्किल में आए बहरहाल किसी भी तरीके से किसी असारत में क्या हैं, परवरदिगार जल्द से जल्द उन्हें नयाम के सदक़े में इस मुश्किल से निजात अता फरमा। जल्द से जल्द उन्हें अपने घर वालों से मिलवा। परवरदिगार हर मोमिन की, हर अज़ादार की, हर शिया ने हैदर कर्रार की जान मिल माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जहाँ भी मातम जुलूस अज़ादारी हो रही है परवरदिगार उन सब की हिफाजत फरमा। मुसलमान जहाँ भी हैं परवरदिगार उन्हें उनके कामों में नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम अगर हिदायत के काबिल हैं तो उन्हें हिदायत अता फरमा, और अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा। जो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं मजलिस में, महफिल में, अज़ादारी में, जिस तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं कोई भी काम जो उनके वजूद से हो रहा है, परवरदिगार उन सब को अपनी बारगाह से अजर कसीर अता फरमा। परवरदिगार हमें मकसद अदादारी को समझने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब को उमरा और ज़ियारात की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाहुम्मा रज़ुकना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ातुहु फ़िल आख़िरा। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद।

0: उम्मीद है आपका सफर अच्छा गुजरा होगा सरदार। सरदार
1: सब कुछ ठीक ठाक है इब्ने उमर।
0: की मेहरबानी से अच्छे हैं।
1: जोधा की क्या खबर है?
0: मैं खबर नहीं, हसन इब्ने अली के घर और दारुल खिलाफा के दरमियान आता जाता रहता हूँ और इस लड़की को तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ। वो अपने बाप के मरने के बाद बहुत गमजदा है।
1: क्या अब भी वो अपने इरादे पर कायम है?
0: कभी मुसम्मम इरादा रखती है और कभी नहीं। एक दिन राजी हो जाती है और अगले दिन पशेमान। अगर अमीर की इनायत और इत्मीनान बख्श वादा हो तो काम हो जाएगा।
1: इत्मीनान बख्श वादा।
0: ये क्या हो गया है?
2: खुदा रहमत करे उस पे। एक बड़ा सरदार था, आज दारुल खिलाफा आया हुआ था और उसने वही जान तोड़ दी।
0: बताओ सच बात क्या है, हकीकत में क्या हुआ है इसके साथ? अभी 1 घंटा पहले जब हसन इब्ने अली के घर से बाहर निकला तो बिल्कुल ठीक था।
2: इससे ज्यादा इसकी उम्र नहीं थी, उम्र ने इसे बूढ़ा कर दिया। कुछ शहद का शरबत पिया था और तुम जानते हो कि शहद का शरबत क्या बला है। दमिश्क से भेजा गया शहद हर एक तो हजम नहीं कर सकता।
0: खासकर दमिश्क का भेजा शहद हो तो। हंस
3: रहे हो? अगर उमर
2: ये
3: इस साथ
2: कौन है?
3: देखेगा कि तुम
2: ध्यान
3: उसकी
2: रखो,
3: बाप की
2: ये
3: मैयत पर
2: उम्मेजीद
3: हंस
2: है।
3: रहे हो तो वो क्या
2: उम्मेजीद
3: सोचेगा? सोचो उसके जहन में कैसी गलतफहमी पैदा हो जाएगी।
0: सलाम हो उम्मे यजीद पर, मादरे फरजंद खलफ अमीर अल मोमिनीन।
3: और मुस्तकबिल के इस्लामी ममालिक के फरमान रहो।

0: उम्मीद है।
1: तुम्हारी उम्मीद की कोई जरूरत नहीं, ये बात यकीनी है। तुम इब्ने उमेर हो,
2: जी बानो।
1: तुम्हारी इसलिए जरूरत है कि जिम्मेदारी को अच्छी तरह अंजाम दो।
0: बानो मैं कोशिश कर रहा हूं।
1: ये काफी नहीं, मैं तो सिर्फ जोधा और तुम्हारे काम पर नजारत के लिए आई हूं। उसका क्या हाल है?
0: नहीं कहा जा सकता कि तैयार है, लेकिन अगर अमीर की इनायत और उनका वादा हो तो उसको फैसला करने में मदद मिलेगी।
1: अमीर की बात मैं खुद ही उस तक पहुंचा दूंगी। तुम उसे यहां ला सकते हो?
0: नहीं, यहां नहीं आएगी।
1: तो क्या मुझे हसन इब्ने अली के घर ले जा सकते हो?
0: आपको
1: जरूरी नहीं है कि कोई जाने, किसी को खबर किए बगैर।
0: मेरा बाप कहाँ है?
3: तुम्हारा बाप मुझसे महवे गुफ्तगू था, इसी असना में उसे सांस लेने में जरा दुश्वारी महसूस हुई और शदीद दर्द का एहसास किया। इससे पहले कि तबीब उसके सराहने पहुंचे, उसने अपनी जान दे दी।
0: तुमने मेरे बाप को मार डाला।
3: फालतू की बात मत करो। मालूम है कि बाप की जुदाई बहुत सख्त हुआ करती है, लेकिन
0: मुझे यकीन है तुम लोगों ने उसे जहर दिया है।
3: तुमने खुद देखा कि उसने हमारे खाने को हाथ तक नहीं लगाया।
1: अलबत्ता मैं तुम्हारी कुछ बातों को एहतमाल देती हूँ। हो सकता है कि सरदार बुजुर्ग अरब मसमूम हो गए हों, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा बाप आखिरी बार किसके घर गया था।
0: सनीब नली कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम लोग हो जो लुमड़ी की चाल चलते हो और कुत्तों की तरह पीछे से हमला करते हो।
2: हे पिसारे साथ, देखो किससे बात कर रहे हो।
0: बकवास बंद करो इब्ने जिलजोशन। मेरा बाप जब इस महल में आया था तो बिल्कुल सही सलामत था और अब मर गया है। मैं तुम लोगों को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता हूँ और मैं सबको बताऊंगा तुम लोगों ने किस तरह से उसे कत्ल कर।
1: रोक लो उसे, यहाँ से जाने ना दो। समझते हो कि तुम्हें इस महल से जिंदा जाने दूंगी ताकि फितना बर्पा करो और लोगों को अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ भड़काओ? साद इब्ने अबी वकास खुद अपनी मौत मरा है। वो हद से ज्यादा दुनिया में जी चुका था और अब इसकी उम्र तमाम हो चुकी है। तुम सबसे यही कहोगे, वरना तुम और तुम्हारे बाप को एक ही जगह दफन कर दूंगी।
0: ये कौन है जो मुझसे इस तरह बात कर रही है?
3: ये बानु अगरामी उम्मे यजीद हैं, जिनके दामन पुरुतूफत में यजीद इब्ने माविया ने तरबियत पाई है।
0: मुझे माफ कीजिए उम्मे यजीद, मेरे बाप की अचानक मौत ने।
1: मैं समझती हूँ इब्ने साद, लेकिन इंसान को हमेशा अपनी अक्ल पे काबू रखना चाहिए इब्ने साद, और अपनी भलाई और मसलहत नजर में हो। इब्ने साद, भूलना नहीं कि उसके दफन से पहले तुम सबसे कहोगे कि उसके मरते वक्त तुम खुद मौजूद थे और अपनी आंखों से उसे अचानक दम तोड़ते देखा। समझ गए?

0: का न मिल सके।
1: जो कुछ अजीम सरदार और मदीने के हाकिम ने फरमाया सब ठीक है। मेरे बाप ने अपनी तूलानी उम्र इस्लाम और मुस्लिमीन की खिदमत में गुजारी। बहुत सारी मुश्किलात और मशक्क़तें बर्दाश्त करने की वजह से वो बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। उनकी उम्र गुज़श्ता रात तमाम हो गई और दावत इलाही पर लब्बैक कहते हुए दारे फ़ानी को विदा कर दिया, जबकि तमाम औकात में उनके सरहाने मौजूद था और उनका सर अपनी आगोश में लिए हुए था। खुदा हम सब पर रहमत नाजिल करे।

0: तुम्हें मुझसे कोई काम है?
1: हाँ,
0: ये औरत कौन है?
2: मुझे नहीं पहचानती।
0: नहीं,
2: मुझे उम्मे यजीद कहते हैं।
0: उम्मे यजीद, जिसके बारे में मशहूर है कि वो माविया का दरबार चलाती है।
2: ये ऐसी बात है जो दुश्मन कहते हैं। अमीर खुद अपने दरबार पर हाकिम है। शक ना करो।
0: इस घर में क्यों आई हो?
2: इसलिए कि अमीर की इनायत और वादे की तुम्हें खबर दूं।
0: मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं ये काम नहीं करूंगी।
1: जोदा, होशियार रहो। ये अमीर अल मोमिनीन की जानिब से तुम्हारे साथ बात करने आई हैं।
2: ये जान लो कि माविया सारे आलम का खलीफा और जानशीन पैगंबर है। वो जो चाहता है ऐन इस्लाम है। जो अमीरुल मोमिनीन मुआविया के रास्ते पर नहीं, वो हक से दूर है।
1: तुमने उसकी ख्वाहिश कबूल करके खुद को शैतान से दूर और खुदा के करीब कर दिया है। अपने बागी और सरकश नफ्स को महार करो। ऐसा ना हो कि बातिल अफकार और कल्बी लगाओ तुम्हें खुदा से दूर करने।
0: नहीं, मैं नहीं कर सकती।
2: अमीरुल मोमिनीन के फरमान को ना ठुकराओ।
1: बेटी, तुम्हारी भलाई इसी में है।
2: यजीद तुम्हारे विसाल से राजी है और अमीरुल मोमिनीन ने भी इस विसाल का वादा किया है और हुक्म दिया है कि सोना चांदी बहिष्टी बाग जो तुम चाहो तुम्हारे नाम लिख दूं।
1: वो बादशाह तुम्हारी तलब में है कि जिसके हाथ में खुदा ने दुनिया के तमाम खजानों की चाबी दे दी है। वो खुदा के जिसने तुम्हारी किस्मत में दुनिया के तमाम औरतों की सरदारी लिख दी है। उस दिन जब अबा मोहम्मद अबल हसन के जानशीन थे तो तुम उनके घर गई, और आज जब यजीद तख्त खिलाफत की जानिब बढ़ रहा है तो तुम उनके घर जाओगी।
2: तुम्हें अरब की औरतों की सरदार होना चाहिए। लड़की, इस सितारे को तुम्हारे लिए आसमान से लिया है, उसे ठुकराओ नहीं। शक ना करो।
0: मैं कैसे यकीन कर लूं?
2: किस चीज का?
0: यही कि अमीर अपने वादे का पाबंद रहेगा।
2: क्या चीज तुम्हें मुतमईन करेगी?
0: नहीं मालूम। मेरे बाप ने कहा कि वो अमीर का दोस्त और हम पैमान हैं, और अमीर ने कभी उनके साथ बदअदबी नहीं की, लेकिन अब तो वो मर चुका है।
1: अगर अमीर रस्मी तौर पर वादा तुम्हें लिख कर दे दे तो तुम कबूल करोगी?
2: इब्ने उमर।
0: हाँ, तहरीरी तौर पर अहदनामा लिखा जाना चाहिए।
2: कोई अहदनामे की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरी बात पर एतमाद करना

0: होगा और अभी फैसला करो।
1: जब तक तहरीरी अहदनामा नहीं होगा मैं कोई काम नहीं करूंगी।
0: ये काम देर या सवेर अंजाम पा जाएगा, अच्छी तरह सोच लो, खासकर अपनी किस्मत के बारे में। फिर उस दिन अमीर अल मोमिनीन की रहमत और उनके लुत्फ की उम्मीद ना रखना। लेकिन अगर तुम अभी इस काम के लिए राजी हो जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें अपने बेटे यजीद की बीवी के उनवान से अमीर के दरबार में ले जाऊंगी और अपनी हिमायत में रखूंगी। अब तुम जानो।
2: तुम बेफिक्र रहो, इससे पहले कि तुम कुछ भी करो मैं उम्मे यजीद से लिखा हुआ अहदनामा ले लूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।

0: क्या कोई हादसा पेश आया सरदार जो मुझे इतनी रात को बुलाया है?
1: मैं खुद भी तुम्हारी तरह बुलाया गया। बानो उम्मे यजीद ने हम दोनों को तलब किया है।
2: मैंने किसी को इब्ने उमेर के पास भेजा है, लेकिन उसके आने से पहले मैंने सोचा कि तुमसे अपना मतलब वाज़े कर दूं। मैं काफ़ी देर से यहाँ टहल रही हूँ और इस मौजू पर सोच रही हूँ। आज जब मैंने जोदा से बात की तो ऐसा महसूस हुआ कि वो हमारी मुराद पूरी करने पर मुकम्मल आमादगी रखती है, सिर्फ फैसला नहीं कर पाई। इसलिए मैंने गौर किया कि अगर उसे कोई सख्त चोट लगे तो घबरा के जल्दी ही फैसला कर लेगी।
1: कैसी चोट बानो?
2: उसके बाप की मौत के बाद कौन उससे ज्यादा करीब है?
0: और बतिबने उमर?
2: ठीक है, अब फर्ज करो कि इब्ने उमेर के साथ कोई हादसा पेश आ जाए।
0: कैसा हादसा?
2: वही हादसा जो अशस को पेश आया था, या साद इब्ने अबी वकास के लिए।
0: उसे मार डालें?
2: कोई मुश्किल है?
0: इब्ने उमेर हमारे दोस्तों में से है।
2: क्या तुम अभी तक अपने गुज़श्ता दोस्तों के वफादार हो? तुम्हें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का वफादार होना चाहिए। तुम्हारी नजर क्या है सरदार?
1: क्या आपको नहीं लगता कि जोदा हमें उसकी कत्ल का जिम्मेदार ठहराए और हमारी बात मानने से इनकार कर दे?
2: मुमकिन है हमें मुकसर जाने, लेकिन वो सरपेची नहीं करेगी। वो इक्तदार पसंद और जाह तलब औरत है, लेकिन उसके बावजूद बुजदिल भी है। उससे मैंने कहा कि ये मौतें उसी तरह होती रहेंगी जब तक देर या सवेर उसकी नौबत भी आ जाए।
1: आपने उसे मेरे
2: बहुत डरी हुई है और अब तक
1: नहीं। क्या वाकई ऐसा?
2: ये शहद का शरबत इब्ने उमेर के लिए है, ध्यान रखो।

0: जोदा मौत की वहशत अपने तमाम वजूद में महसूस करना चाहिए, उस वक्त पक्का फैसला कर लेगी। जबकि मैंने उससे यह भी वादा किया है कि यजीद की बीवी बन जाएगी, और मेरा ख्याल है कि यह वादा कारसाज होगा।
1: क्या वाकई आपका ऐसा इरादा है बानू?
0: नहीं, हरगिज नहीं। क्या मैं अपने बेटे के लिए ऐसी औरत लाऊंगी जो पहले से अपने शौहर के कत्ल करने का तजुर्बा कर चुकी हो? अच्छा कहो, तुम्हारी नजर क्या है?
1: अगर बानो उम्मे यजीद यही चाहती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।
0: हाँ, मसलहत तो इसी में है। मेरी नजर में फिलहाल इस औरत को राजी करने का यही तरीका है।
2: इब्ने उमर आना चाहता है।
0: उसे आने दो।
1: उससे कहो कि अंदर आए।
3: मैं समझा कोई हादसा हो गया है जो इतनी रात गए मुझे तलब किया है। जाहिरन कोई जश्न बरकरार है और उम्मे यजीद की मुझ पर भी इनायत हुई है।

0: हाँ इब्ने उमर, सोचा कि ये बात अच्छी नहीं होगी कि हम लजीज खाने खाएं और हमारे दोस्त इन लजीज ग़िज़ाओं से महरूम रह जाएं।
1: मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुस्तकबिल के खलीफे की महबूब माँ का साया हमारे सरों पर बाकी रखेगा।
0: पियो इब्ने उमर, ये शहद का शरबत बहुत मज़ेदार है।
1: ये शरबत वही शरबत नहीं जिसने कल रात साद इब्न अबी वक्कास को हलाक कर दिया?
0: हाँ, उसी शहद का है।
1: शिमर ने तो कहा था ये बहुत ताकतवर शहद है और साद इब्न अबी वक्कास का कमजोर जिस्म इसको बर्दाश्त ना कर सका। अब मेरी अजीज बानो बताइए कि आप क्या समझती हैं कि मेरा ज़ईफ़ और अलील जिस्म इसको बर्दाश्त कर पाएगा?
0: हाँ, इत्मीनान रखो, हजम कर सकते हो, तुम्हारे मिजाज के मुताबिक है।
1: बानों में मर के गिर तो नहीं पड़ूंगा ना।

0: अभी तक कोई खबर नहीं आई बानो।
1: ठहरो, सब्र से काम लो। क्या हुआ इब्ने जिलजोशन, परेशान लग रहे हो?
2: नहीं, मैं परेशान नहीं हूं।
1: क्यों नहीं हो? तुम शायद इस फिक्र में हो कि देर या सवेर तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। क्यों, कोशिश करो कि तुम खुद को इस फिक्र से निजात दो, वरना सुकून नहीं पाओगे।
2: बरसों से मैंने सुकून नहीं पाया है।
1: मैंने सुना है कि अबा मोहम्मद के साथी बड़ी आसानी से मौत का इस्तकबाल करते हैं और मौत से डरते नहीं हैं। क्या ये सही है?
0: ऐसा ही है, मैंने खुद बारहा यह देखा है।
1: जानते हो इसकी वजह क्या है?
0: मैं माफी चाहता हूं बानो, उस वजह को मैं तन्हाई में अपने जहन में दोहराता हूं।
1: यही कि वो लोग ईमान रखते हैं और तुम नहीं रखते, सही है? लिहाजा हमें भी अपना ईमान कवी करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि उन्हें शिकस्त दें, तो हमें भी उन्हीं की तरह ईमान रखना होगा।
2: ईमान किस चीज पे?
1: किस चीज पे? अमीरुल मोमिनीन और उसके फर्जंद यजीद पर। क्या ये दोनों तन्हा हमारा सहारा नहीं है?

0: ज्यादातर अमीर की इनायत पे ईमान रखता हूँ।
1: फिर तो तुम्हें सख्त दिन का सामना करना पड़ेगा शिम्र, हमेशा अजाब में रहोगे, खौफ वो वहशत वो हैरानी तुम्हें कभी चैन से नहीं छोड़ेगी। जानते हो क्यों? इसलिए कि अमीर की इनायत मुख्तलिफ शक्ल में जाहिर होगी, कभी जेवर की शक्ल में, कभी दौलत की शक्ल में, कभी हुकूमत की शक्ल में, और कभी उस शहद के कालिब की शक्ल में जो इब्ने उमेर ने पिया था।

इब्ने उमेर कैसे मर गया? क्या तुमने उसे मारा है? तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो, मौत तो देर या सवेर सबको आनी है। इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, कोशिश करो कि जिंदगी से फायदा उठा लो। मुआविया के महल की सोचो, यजीद की बीवी बनने की फिक्र करो। मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है।

0: अब इससे ज्यादा गौर फिक्र करना मुनासिब नहीं है जोदा।
1: ये काम मैं नहीं कर सकती, मैंने अपना इरादा बदल डाला है। चाहे तुम मुझे कुछ भी दे दो, यजीद की बीवी भी अगर बना डालो, मैं ये काम नहीं कर सकती।

0: मैं तुम्हें हकीकत बता दूं मानो, मेरा ख्याल है कि शायद वो ये काम नहीं कर सकेगी।
1: तुम वापस जाओ, मैं यहीं मुंतजिर रहूंगी।
0: मुंतजिर किसकी?
1: ऐसी चीज की मुंतजिर जो तुम्हारी निगाह में गैर मुमकिन है।

0: तुम किसी चीज की फिक्र ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब तुम जाओ मेरी बेटी। जानते हो ये औरत कौन थी? जोदा।
1: कौन जोदा?
0: अशस की बेटी और हसन इब्ने अली की बीवी।
1: वो दारुल हुकूमत आ गई?
0: हाँ, मेहमान थी।
2: कैसे आपने उसे मेरे घर आने पर आमादा कर लिया बानू? ये काम तो अशस भी ना कर सका।
0: मुझे अशस के बराबर समझते हो? अब तुम जाओ और अपने आप को तैयार कर लो उस खबर को सुनने के लिए जिसका मुद्दत से इंतजार था। आखिरकार जोदा तस्लीम हो गई है और हसन इब्ने अली के कत्ल के लिए तैयार है।
2: क्या वाकई ऐसा है?
1: वो राजी है?
0: हाँ, राजी है। अब जल्द ही बनी हाशिम आजादार होंगे। अब जाओ और उस वक्त के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए? मेरी राय है कि मुगैरा और बुसर से, जो कूफा व बसरा के हाकिम हैं, उनसे मदद लो। मुमकिन है कि हसन इब्ने अली के तरफदारों से जंग पर मजबूर हो जाओ।

0: मैं ये काम नहीं कर सकती, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती।
1: मैं और तुम्हारा बाप मुआविया के करीबी लोगों में
0: नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती।
1: तख्त खिलाफत खून के दरिया से इसलिए हासिल नहीं किया कि एक चमड़े के अहदनामे की खातिर किसी के हवाले कर दे। मुआविया के बाद
0: मैं ये काम नहीं कर
1: सकती। यजीद ही तख्त खिलाफत पे बैठेगा।
2: यजीद तुम्हारे विसाल से राजी है
0: काम नहीं
2: और अमीर उल्मोमिनीन ने भी इस विसाल का वादा किया है और हुक्म दिया है कि सोना चांदी बहिश्ती बाग जो तुम चाहो तुम्हारे नाम लिख दूं।
0: मैं ये काम नहीं कर सकती।
1: वो बादशाह तुम्हारी तलब में है कि जिसके हाथ में खुदा ने दुनिया के तमाम खजानों की चाबी दे दी है।
0: नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम मेरे बस का नहीं। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती। नहीं
2: ये काम देर या सवेर अंजाम पा जाएगा।
0: मैं ये काम नहीं
2: अच्छी तरह सोच लो
0: नहीं।
2: खासकर अपनी किस्मत के बारे
0: नहीं
2: में
0: कर सकती।
2: फिर उस दिन अमीर अल मोमिनीन की रहमत और उनके लुत्फ की उम्मीद ना रखना।
3: इब्ने उमर
0: मैं ये काम नहीं कर सकती।

0: उसकी मदद करूंगा। वो शक में पड़ गई है।
1: उसे खुद फैसला करने दो। अब ये वक्त है कि मैं उसके पीछे जाऊं।

0: लगता है कि काम तमाम कर दिया है।
1: बानो, बानो मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम मेरे बस का नहीं है बानो, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है बानो मुझे छोड़ दे, मैं ये काम नहीं कर सकती बानो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे।
2: माविया के महल का सोचो, यजीद से शादी का सोचो।
1: मैं डरती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती।
2: तुम्हें ये काम करना पड़ेगा जोधा, अच्छे दिन तुम्हारे इंतजार में है, समझा करो, डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो, क्यों इतना घबरा रही हो जोधा? यजीद का सोचो, माविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो। तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी, क्यों रो रही हो? महल की अय्याशी का सोचो, कैसी जिंदगी गुजारोगी वहाँ?

0: देखो हुजर इब्न आदी और आदी इब्न हातम मजमे के आगे आगे चले आ रहे हैं।
1: कहां जा रहे हैं?
0: मदीना।
1: मदीना? मगर मदीने में क्या हुआ है?
0: नहीं जानता, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूं कि क्यों मरवान ने हमें इतनी उजलत के साथ मदीना में बुलाया है और क्यों ये लोग इतने इश्तियाक से मदीने की तरफ रवाना हुए।
1: अच्छा बताओ क्यों?
0: मेरा ख्याल है कि अबू सुफियान के बेटे का फरमान नाफिज हो गया है।
1: कौन सा फरमान?
0: हसन इब्न अली या कत्ल हो चुके हैं या इहतजार के आलम।

0: सरदार है बुजुर्ग, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तलवारें उठा लेनी चाहिए।
1: ये औरत कौन है?
0: ये वही औरत है जिसने हसन इब्न अली को जहर दी है। हसन इब्न अली की बीवी है।
2: उसे अपने हाल पे छोड़ दो। बुसरे इब्ने अर्ताद कहाँ है?
3: रास्ते में है।
2: तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं?
1: शहर दमिश्क के बाहर।
2: उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एहतियात से मुंतजिर रहो। मुमकिन है कि टकराव से बचना मुश्किल हो। अगर हसन इब्ने अली के साथी तलवार उठा लें तो तुम भी देर न करो, तलवार कर

था तो अपने साथियों को और जो भी लोग मौजूद थे, इमाम हुसैन ने चार शराय बयान की अपने साथ जाने के लिए। पहली चीज इमाम ने कहा, जो अपने खून का फसल कर सकता है, जो अपनी जान को हथेली पे रख सकता है, ये पहली शर्त है। अगर ये मेरे अंदर है तो फिर मैं करबला का रुख करूं। अगर आज मैं अपनी जान का नजराना दे सकता हूं अपने वक्त के इमाम को तो फिर मैं करूं। इमाम को दुनिया परस्त नहीं चाहिए, इमाम को वो शख्स नहीं चाहिए जिसको अपनी जान का खतरा हो, अपने बच्चों का खतरा हो, अपने कारोबार का खतरा हो, फिर वो गलत आया है यहाँ पर। यहाँ पे पहली शर्त यह है कि आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या तैयार है? अगर कल को और हालात खराब हुए तो क्या आप घरों में बैठेंगे या ज़ियारत पर आएंगे? दूसरी शर्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि अगर जो खुदा से मुलाकात चाहता है वो मेरे साथ आए। क्या हम खुदा हमारी जिंदगी में है या नहीं है? खुदा की बारगाह में सजदा कितना है? हम तन्हाई में अपने परवरदिगार से कितनी मनाजात है? जिस मौला कायनात को हम मानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, उस इमाम की जो मनाजात है वो हमने अपनी जिंदगी में कितनी दफा पढ़ी है? कितनी तन्हाई में हमने सजदा किया है? किस जिस रसूल को हम मानते हैं वो खाक पर मदीना की रात को अपने रुखसार को रखकर ये फरमा रहा है, रब्बे ला तकलनी इला नफ्सी तरफ आए देना।

जब दुनिया की सुपर पावर ट्रिलियन डॉलर खर्च करके हम उसको घुटने टिका सकते हैं तो कोई इस निजाम के मुकाबले में ये गलत फहमी ना करे कि आएगा। क्यों? क्योंकि हर रब के अंदर हुसैनियत जिंदा है। हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे मगर इन हरमों को कुछ नहीं होने देंगे। इस निजाम को बचाने के लिए नस्लें तैयार हो चुकी है। अजीजाने मोहतरम, वो यूसुफ जहरा आज हमारा इंतजार कर रहा है। बस करबला जाए, इमाम हुसैन को कुछ ना मांगे, सिर्फ ये कहे मौला मैं सिर्फ हाजिरी लगाने आया हूँ, जब आपका फर्जन जहूर करेगा मैं अपने धर्मों से अपने कदमों को निकाल लूंगा। जिस तरह लबैक या मेहदी, लबैक या मेहदी।

कोई थकता नहीं इस सफर के अंदर, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। आज पूरा दिन हमने सख्त गर्मी के अंदर भी देखा कि हर शख्स चल रहा है, और उसके अलावा जो लोग इनकी खिदमत कर रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश में कि किसी तरीके से भी जाहिर है इमाम हुसैन को तकलीफ ना हो। क्यों तकलीफ ना हो? क्योंकि जाहिर की जो कीमत है उसे कोई भी पे नहीं कर सकता। जाहिर का जो मर्तबा है, जाहिर का जो मकाम है, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो इस रास्ते चंद दिन चल कर देखें। यही चलना आपको बताएगा कि ज़ियारत क्या है। ये इतना हर मुल्क, हर रंग, मुख्तलिफ रंगों को देखा, मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ ज़बानें एक ही जगह पर जमा होकर ये बता रही हैं कि इमाम हुसैन सबका है। इन चंद दिनों के अंदर जो इश्क और मोहब्बत को एक वजूद में उजागर करते हैं जिससे हर शख्स जुड़ा हुआ है, इन चंद दिनों में ये 8 से 10 दिन ये सफ़र जारी रहता है। इस 8 से 10 दिन के सफ़र में एक करोड़ों की हुकूमत, जिसमें चलने वाले भी हैं, जिसमें खिदमत करने वाले भी हैं, जिसमें आप रास्ते में देखें हर शख्स कोई चाय, कोई शरबत, कोई खाना, हत्ता खिदमत करना, हत्ता हर चीज़ कपड़ों को धो के देना, सब एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा निज़ाम तश्कील पा रहा है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। दुनिया की कोई हुकूमत इतने दिनों तक एक दिन भी इन लाखों करोड़ों लोगों को खाना नहीं खिला सकती। ये सिर्फ हुसैन है जो करोड़ों को जमा कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा करबला मेरी नज़र से।

करबला अपने दामन में वो हकीकतें पिनहान किए हुए है जो हर साल ज़हूर करती है, और ऐसी ज़हूर करती है कि इंसान के वजूद पे असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। क्या हम उस हकीकी करबला को ढूंढने आते हैं या नहीं आते हैं? क्या हकीकी करबला यही है कि हम दरो दीवार को लम्स करें और यहाँ से वापस चले जाएं, या उस इम्तिहाने इलाही को पहचाने, उस आजमाइश इलाही को पहचाने जिसकी खातिर परवरदिगार ने 124,000 पैगंबरों को भेजा? क्या करबला सिर्फ इसलिए है कि मैं और आप आएं और सवाब कमाएं और वापस चले जाएं? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर को इसलिए कुर्बान किया? करबला हमसे कुछ मांगती है। करबला हर साल अपनी एक हकीकत को ज़हूर देती है। करबला हर दौर में एक पुर छाती है। करबला

जब हम ज़ियारत पर आते हैं तो ज़ाहिर है इंसान बहुत कुछ छोड़ कर आता है और बहुत कुछ हासिल करने के लिए आता है।

करबला एक ऐसी दास्तान है जिसे हर एतबार के साथ, हर एक दर्जे के साथ जिसे सजाया गया। करबला की दास्तान में एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े मकाम पर पहुंच गया जो बाबुल हवाइज बन गया। करबला के इस नन्हे मुजाहिद से बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन मुत्तसिल होते हैं, तवस्सुल करते हैं जब भी अपनी किसी मुश्किल में फंसते हैं। इसीलिए ये बाबुल हवाइज हवाइजों का दरवाज़ा है, हाजतें यहीं से पूरी होती हैं। मगर दास्तान का एक और रुख है जिसे हज़रत अली अकबर ने मुसव्विर की तरह एक ऐसा रंग भरे और उस रंग के अंदर हक और बातिल वाज़ह हो गया। अगर ये 6 माह का मुजाहिद ना होता तो यजीदियत का नकाब कभी हट नहीं सकता था। जो इस्लाम के चेहरे पर यजीद आकर बैठा हुआ था उसे इस 6 माह के बच्चे ने बेनकाब किया। दुनिया जितनी भी जालिम हो छोटे से बच्चे को प्यासा नहीं रखती है। तो मेरे मौला इस बच्चे को लेकर आए।

कहा कि मुझे पानी नहीं, इस बच्चे को पानी चाहिए। मगर उन्होंने इस बच्चे को पानी न देकर बता दिया कि ये इंसान नहीं थे, ये हैवान से भी बदतर थे। ये है अली असगर कि जिसने तारीख जितने भी अदवार को गुजारती रहेगी, हम जिस मकान और जमान में इस बात को तय करते रहेंगे, जब भी हजरत अली असगर का जिक्र आएगा, यजीद का चेहरा और बद से बदतर होता जाएगा।

करबला में सिर्फ ज़्यारत ही इंसान को कमाल पर पहुंचा सकती है, लेकिन ज़्यारत भी कैसी ज़्यारत? ज़्यारत हमें ये सिखाती है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के हर फर्द के साथ आए थे। यहाँ पर बूढ़ा शख्स भी था, यहाँ पर जवान भी है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं और बहनें भी हैं। खूब एक पूरा एक ऐसा सिस्टम जिससे माशरा चल सकता है। करबला यही दर्स देती है कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बर्ताव था सबके साथ, हत्ता दुश्मन के साथ। जब हम यहाँ आते हैं और ज़्यारत करते हैं, तो ज़्यारत के बाद ये ज़्यारत हमारे वजूद से ज़हूर करनी चाहिए, यानी इसके असरात हमारी हालात हाजरा की ज़िंदगी के ऊपर मुरतब होने चाहिए। जब हम यहाँ से जाएं, तो फिर हम वो ना हो जो आए थे। हम जिस तरह आए, फिर हम जब यहाँ से जाएं, वो हो जैसा इमाम चाहते हैं। अतः हमारी गुफ्तगू, हमारा किरदार, हमारी रफ्तार, हमारा बिहेवियर ये बताए कि ये शख्स कहाँ से आया।

को हमसे पूछना ना पड़े कि क्या तुम ज्यारत करके आए, ये ना हो कि लोग हमसे कहें कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम करबला गए थे। बल्कि वो जब हमारे अंदर एक तब्दीली को देखे, इखलाक को देखे, हमारी अव्वल वक्त नमाज को देखे, हमारे कुरान की तिलावत को देखे, हमारे रवैये को देखे, हमारे इखलाक को देखे, तो वो खुद ये कहे कि तुम करबला से आए हो, तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत करके आए हो। ऐसी ही करबला जो है वो मेरी नज़र से है, यकीनन अब के बाद आपकी करबला भी ऐसी ही हो जाए।